0: दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी, आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: लाख पर्दों में रहूं, भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: गजल पेशी खिदमत है हसर की मानेगी।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: वो आपकी खिदमत में शायर लखनवी की गजल जो फरमाइश के तौर पे दी गई है, जो थके थके से तो हौसले।

0: सामान्य हमारे चीता चीता प्रोग्राम जिस तरह हमारा रूटीन का प्रोग्राम होता है वो आपके साथ हम शेयर भी करेंगे और आपको बहुत सारी खबरें भी देंगे। समय नाज़रीन बहुत सारी खबरें होती हैं जो आप देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। वो बहुत सारी जो लोग लगाते हैं या अपने तर्ज की लगाते हैं, अपने तरीके से लगाते हैं, वो हकीकत नहीं होती। अगर 6 सितंबर की बात हो, 6 सितंबर के नाम को कैश कराया जाए तो फिर 6 सितंबर वाला माहौल भी बनाना पड़ता है, माहौल भी होना चाहिए। खाली 6 सितंबर का नाम लेकर जो है खबर लगा कर उससे 6 सितंबर मनाने का जो है वो दिन नहीं मनाया जाता। आपकी खबर तो बन जाती है और ख़ासकर जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो हकीकत पर बनाया करें। एक पार्टियाँ होती हैं, हकीकत होता है, कोई भी पार्टी हो, जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं वो पार्टियाँ हैं। खुलकर उनका नाम लें, खुलकर उनकी बात करें, खुलकर उन पर बात की जाए तो हकीकत पर मबनी होना चाहिए। दो नंबर खबरें बनाकर उनको लगा देना, अखबारात में लगा देना, उसकी कोई वैल्यू या कोई वक़्त नहीं होती है। हम खुद लोग सारे जो लोकल होते हैं हमें सब कुछ पता होता है कि हकायक पर मबनी क्या है, तो इस पर हमें ख्याल करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि खबर जो है वो हकीकत पर जो मबनी हो। समय हमारे साथ साथ रहिएगा।
1: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी ज़बान से जुड़े रहें।
2: मोहतरम सामाइन, मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है मुनाफिकीन। कुरान हकीम के शुरू में अल्लाह ताला ने इंसानों को तीन ग्रोहों में तकसीम फरमाया है, नंबर 1 मोमन, नंबर 2 काफिर और नंबर 3 मुनाफिक। सबसे पहले अल्लाह ताला ने मोमिनीन का मुख्तसर जिक्र फरमाया है, फिर कुफार का जिक्र सिर्फ एक ही आयत करीमा में किया है और आखिर में मुनाफिकीन के बारे में इंतहाई तफसील से जिक्र फरमाया है। इन मुनाफिकीन का जिक्र कुरान मजीद में इतनी तफसील से इसलिए है कि ये माशरे के बदतरीन अफराद हैं। कुफार से कहीं ज़्यादा नुकसान इस्लाम को इन मुनाफिकों की वजह से पहुँचा है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान हकीम में इन मुनाफिकों के किरदार को पूरी तफसील से बेनकाब किया है। यही नहीं बल्कि इनके दर्दनाक अंजाम की भी मुफस्सल खबर दी है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इन मुनाफिकीन के बारे में क्या फरमाता है। सूरतुल बकर की आयत नंबर 8 और 9 का तर्जमा है कि और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम खुदा पर और रोज़े आखरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। ये खुदा को और मोमिनों को चकमा देते हैं मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को चकमा नहीं देते और इससे बाखबर हैं। मोहतरम सामईन, ज़रा गौर फरमाइए, हालांकि ये मुनाफिकीन अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं और रोज़े क़यामत पर यकीन का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार नहीं कर रहे। ये उस दौर के यहूदियों का रवैया था। और ये कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार ना किया जाए किसी भी बात का यकीन कोई मानी नहीं रखता। सूरतुल बकर की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि इनके दिलों में कुफर का मर्ज़ था, खुदा ने इनका मर्ज़ और ज़्यादा कर दिया और इनके झूठ बोलने के सबब इनको दुख देने वाला अजाब होगा। सामईन मोहतरम, इस आयत से ज़ाहिर होता है कि झूठ बोलना कोई छोटा मोटा मामूली गुनाह नहीं है बल्कि झूठ वो गुनाह अजीम है जो एक मोमन को मुनाफिक बना देता है। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह हज की आयत नंबर 30 में झूठ का बुतपरस्ती के साथ जिक्र फरमाते हैं। इरशाद होता है कि अपने आप को बुतपरस्ती और झूठ बोलने से बचाओ। मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में मजीद फरमाता है, सूरतुल बकर की आयत नंबर 11 और 12 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना डालो तो कहते हैं हम तो इसलाह करने वाले हैं। देखो ये बिलाशुबा मुफसद हैं लेकिन खबर नहीं रखते। आगे चलकर अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल बकर की आयत नंबर 13 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए हैं तुम भी ईमान ले आओ तो कहते हैं भला जिस तरह बेवकूफ़ ईमान ले आए हैं इसी तरह हम भी ईमान ले आएँ, सुन लो कि यही बेवकूफ़ हैं लेकिन ये नहीं जानते। मोहतरम सामईन, ईमान की कसौटी ये है और काबिल कबूल ईमान सिर्फ़ वो है जो कि सहाबा कराम की तरह का हो। गौर फरमाइए कि सहाबा कराम की कितनी इज़्ज़त अफजाई है। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की एक और किस्म इस तरह बयान फरमाई, सूरतुल बकर की आयत नंबर 14, 15 और 16 का तर्जमा, और ये लोग जब मोमिनों से मिलते

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें, 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
2: शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है।

0: कि वो अपने उनके बच्चे स्कूल पढ़ते थे, तो उन बच्चों के फीस देने के लिए पैसे आप नहीं थे, तो उन्होंने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया, बच्चों को स्कूल से निकाल लिया है, और बड़ी तंग हालात हो गए, जहां तक खाने पीने के लाले पड़ गए वो। तो अब उनके लिए आजमाश शुरू हो गई कि देखा ना, पहले जो हम थे तुम्हारे क्या कर रहे हो फर था, और अब तुम्हारे पे खाने पीने कुछ नहीं। कहते इसी दौरान में किसी कंपनी की तरफ से उसका कोई एडवर्टाइज करना था, कोई उन्होंने को गाना गाना था, तो वो किसी अरब की बड़ी कंपनी थी उसकी तरफ से इनको ऑफर आई है, और वो फिर कई करोड़ों का उन्होंने कहा कि इतना हम आपको देंगे और आप आए और आकर के आप जो है इसके लिए कहें। अब शैतान ने उनको, मतलब जो नील जमशेद साहब को, आप कहा देखो अब पैसे आ गए तो तुम फिर तोबा कर लेना और ये फिर शुरू कर दो। तो कहते हैं ऐसे रहा, पर यहाँ तक कि मैंने जो है दाढ़ी रखी थी, पहले गाने छोड़ के फिर वो दाढ़ी मैंने मूंड ली है, और चूंकि हालात बहुत तंग थे, और फिर मैं दुबई के जनाब होटल में गया, दूसरे दिन मैंने अपना ये अपने गाने हैं गाने शुरू कर दिए। तो कहते सारी रात अब मैं, मेरा एक इम्तिहान, एक तरह शैतान है एक तरह मेरा ईमान है। तो शैतान कहता रहा कुछ नहीं होता है, क्या है कितने लोग कर रहे हैं, तो इतना बड़ा पैसा है। ईमान दूसरी तरफ से मैं यही कहता कि देखो अगर ये गाना गाते अगर तुम मर गए अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे। तो सारी रात कहता है ये काम लगी रही, और सुबह फजर की जब मैं नमाज पढ़ी तो मैंने उस वक्त मेरा ईमान शैतान पर गालिब आ गया, ईमान शैतान पर गालिब आ गया। मेरे ईमान ने कहा बस कुछ भी हो जाए मैंने ये काम नहीं करना है, और फौरन उसी जो है पहली फ्लैट लेकर मैं वापस आ गया, और मैंने तौबा कर ली कि आइंदा इस किस्म का इरादा भी नहीं करूंगा। और जैसे अभी कि इम्तिहान था, वो कहते हैं कि इम्तिहान जब मैंने पास किया अल्लाह को मंजूर हुआ, तो फिर अल्लाह ताला रिज़्क ऐसे दरवाजे खोले, ऐसे दरवाजे खोले कि जो हमारे वहम गुमान में नहीं थे। तो ये मुसलमान हूँ, ये इस दुनिया में इम्तिहान आते हैं ईमान वालों के लिए, और जिस आदमी जो इस इम्तिहान पास हो जाएगा उसके लिए दीन और दुनिया की सारी भलाइयां आ जाएंगी। तो जब आदमी इस दुनिया में समझे कि नहीं दुनिया भी चलती रहे आराम तरीके से और दीन भी होता रहे, ईद की नमाज भी पढ़ लेते हैं, जुमे की पढ़, तो ये सारी जो है ये एक आदमी नफ्स को खुश करने वाली बातें हैं, इससे जो है ना वो दीन होता है और या कुछ भी नहीं होता। अपने बहरहाल कुरान आपसे कहता है कि इसलाह करो और अपने आप को नबी के इन मकासद के मुताबिक जिंदगी गुजारो। तो अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाते हैं कि हाँ आगे उन लोगों के लिए जिनके पास जो है दीन है लेकिन अमल नहीं करते, अल्लाह ताला फरमाते हैं मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौरात थुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार यहमिल अस्फारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं मसाल उन लोगों की, मसाल उन लोगों के जिनके ऊपर तौरात लादी गई थी, यानी तौरात जबरदस्ती उनको दी गई थी। अल्लाह ताला ने जब तौरात बनी इसराइल को जबरदस्ती उनको दी है तो हुम्मिल उन पर लादी गई है, थुम्मा लम यहमिलूहा लेकिन फिर उन्हें उठाया नहीं, उसको शौक से उसको अपने अमल में लेके आते। थोड़ा उन लोगों की मिसाल गधे की तरह से है, कैसा गधा ये हमेलो असफारा के जो गधा अपने ऊपर जो है बहुत ज्यादा ना काम वजन उठाया हुआ है, किताबों का इलम का वजन उठाया हुआ है, लेकिन उस गधे को उसकी किताबों इलम की किताबों से गधे को क्या फायदा है, गधे का ऊपर उठा रहे बस। तो इससे अल्लाह ताला ने उन लोगों मिसाल दी जो जो है नबी के और कोई अल्लाह ताला किताब के मकासद पर अमल नहीं करते हैं। किताब तो मौजूद है तो वो एक गधे की मिसाल होती है, जैसे गधे के ऊपर किताब ला दो। तो ऐसे जैसे आजकल मुसलमान है कि कुरान तो घरों में पड़े हुए हैं, अलमारी में पड़े हुए हैं या मस्जिदों में पड़े हुए हैं, लेकिन अगर ये लोग अगर इस कुरान को, और ये कहते हैं कुरान है, और जब कोई मरता है तो कुरान लेके भी आ जाते हैं खत्म के लिए, कुरान लेके सामने आ जाते हैं, तो लेकिन कुरान पर अमल को नहीं करते। तो ये कुरान में अल्लाह साहब बता दिया है कि इनकी मिसाल गधे की तरह से है, कि कुरान तो आया था तमाम पाक करने के लिए, नजासत से पाक करने के लिए, और वो नजासत तुम्हारे ऊपर उस्ता से पड़ी हुई है, जिस्म की पड़ा है गंदगी, अखलाक की गंदगी भी है, बातनी गंदगी भी है, नजासत भरी हुई है। तो ये कुरान उठाने से तुम्हें उसका कोई फायदा नहीं होगा, जैसे कि गधे को अपने ऊपर वजन उठाने से कोई फायदा नहीं होता है, तुम्हारा भी हाल है। तो इसके बाद क्या और को वजह चाहिए, कुरान बड़े वाज तरीके से ये बताता है ये। तो इसे मुसलमानों को इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए, अपनी ये सलाह कोशिश करनी चाहिए आगे। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं बिसमिल्ला, फरमाया कि उन लोगों की बहुत बुरी मिसाल है जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया। तो आयत का झुठलाना का ये माना होता है कि अल्लाह ताला कह रहा है नमाज पढ़ो, आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, اللہ تعالیٰ کہتا ہے رزق حلال کھاؤ، رزق حلال نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے زکاۃ تو زکاۃ دیتا ہے، روزے روزے نہیں رکھتا ہے، اور جو اللہ نے کہا کہ سچ بولو آدمی سچ نہیں بولتا ہے، تو یہ گویا کہ وہ اللہ کی ان آیتوں کا حکام کو جھٹلا رہا ہے. اور واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، رہنمائی نہیں کرتا، یہ جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. اور آج ساری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، اور مسلمان مسلمان پر ظلم کر رہا ہے، مسلمانوں پر جہاں جائیں ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے. اور یہ جو ہے آج کل مسلمان نشانہ بن رہے ہیں ہر جگہ، ہاں بھی وہاں بھی، اپنے ملکوں کے اندر بھی آج دین پر چلنے والے لوگ ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں. تو یہ اسی قرآن کی تعلیم کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور ان کو پتہ نہیں کہ ان ظالموں کا انجام کل کیا ہوگا. یہ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، قرآن سمجھنے کی توفیق دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح میلاد بنانے کا، اور جو ہے آپ کی جو ہے بعثت کا مقصد سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تمام مسلمان جہاں جہاں کہیں آج ظلم کا شکار ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، ظالم کے ظلم سے بچائے. اور خاص کر کے ہمارا ملک پاکستان جو ہم خبریں پڑھتے ہیں چاروں طرف سے گھیرے میں ہے، اور دن بہ دن اور مصائب مصیبتیں آ رہی ہیں، پتہ نہیں یہ کیا بڑھے گا، بڑے حالات خطرناک ہیں. اس کے لیے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو ہر سازش سے، اپنوں پرانگ سازشوں سے اللہ پاکستان کے حفاظت فرمائے، پاکستان کے مسلمانوں کے اللہ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
1: سامعین و ناظرین، آپ خطاب سماعت فرما رہے تھے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب کا.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: समाइन इस वक्त हमारे साथ रहमतुल्ला बेग साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं। रहमतुल्ला बेग साहब यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। एक ज़माने में मलक सदीक साहब जो थे वो उनके पास ये चीफ ऑर्गेनाइजर वाला होता था। अब जो है रहमतुल्ला बेग साहब हैं, यह मुस्लिम लीग नवाज को यहाँ रन कर रहे हैं, चला रहे हैं। उनके साथ हैं चेयरमैन हैं मास्टर याकूब साहब, सदर हैं उनके आफ्ताब रोमी साहब, बाकी इनकी टीम है जो इनके साथ काम करती है। ये एक मिले जुले साथी हैं, आपस में बातचीत भी करते रहते हैं। तो आज जो रहमतुल्ला बेग साहब हमेशा ये जितने दिन होते हैं ये दिन मनाते हैं मुस्लिम लीग के हवाले से, कौमी जो दिन होते हैं, तो नवाज शरीफ साहब के साथी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह जो आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं, ये गाजी हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी सआदत है कि जो इस वक्त तक जो है वो ठीक है, अपना जो है अपना काम चला रहे हैं, सेहत अच्छी है, और फौज 65 की जंग के ये गाजी हैं। बेग साहब हम आपको सलाम करते हैं, 65 की जंग के आप गाजी हैं।
2: जी राज साहब बहुत शुक्रिया नवाज़िश।
1: बेग साहब जब ये 65 की जंग थी तो आप डेफिनेट फौज में थे, आप चूंकि खिलाड़ी भी थे, फौज में जो है वो खिलाड़ी की बड़ी रिस्पेक्ट होती है। आपके पास जो कलर भी आपने देखा, वो कोट भी देखा, पाकिस्तान का कलर भी देखा बेग साहब,
2: वो जो था वो 66-67 का था, जब मैं गाजी हूँ 65 का। 65 में मैं आर्मी में नहीं था, मैं 66 में गया हूँ आर्मी में। 65 में हमारे घर के दो ट्रक होते थे, और जब जंग शुरू हुई तो हम लाहौर कैंट से असला लेके जाया करते थे बॉर्डर पे, हडियाराबाद बॉर्डर पे और सेम किर बॉर्डर पे। और क्या बताऊं, बहुत ही शिद्दत के साथ हमारे ट्रक के ऊपर एक बम गिरा जिसने सारा ट्रक तबाह कर दिया, लेकिन अमनिशन जो लेके जाना था वो हमने जल्दी से निकाल के बाहर रखा, फिर दूसरी गाड़ी आई तो वो ले गई। तो हम तो अल्लाह का फजल करके,
1: आप काम तो फौज के लिए कर रहे थे ना?
2: जी बिल्कुल, फौज के लिए कर रहे थे, फौज अपने मुल्क के लिए कर रही थी और मैं भी अपने मुल्क के लिए काम कर रहा था। क्योंकि हिंदुस्तान के जो वजीर आजम थे उन्होंने कहा था कि हम आज सुबह नाश्ता जो है वो हम लाहौर में आके करेंगे, तो मैंने कहा देखते हैं कैसे होता है नाश्ता इनका लाहौर में। और बड़ा जज्बा था, शौक था, और हमने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी जिसकी दुनिया सारी गवाह है। और अल्लाह ताला का फजल करम से पाकिस्तान जो था वो जो उन्होंने नक्शा बनाया था वो उसका उनका तोड़ फोड़ हो गया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। पाकिस्तान एक पूरी दुनिया में मुतारफ हुआ पाकिस्तान, और आज भी आज का दिन जो है वो हम बड़ी खुशी से मनाते हैं कि हमने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पूरी दुनिया में लगे। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमने अपने पाकिस्तान को बचाया, अपने जान और माल कुर्बान किए हमने पाकिस्तान पे, और अल्लाह के फजल और करम से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे।
1: बेग साहब आपने हमेशा जिंदाबाद के नारे लगाए, आपने हमेशा कौमी दिन जो है वो उजागर किए, आपने हमेशा कौमी दिन मनाए, 6 सितंबर का दिन भी आप मनाने जा रहे हैं, आपकी छतरी के नीचे मनाया जा रहा है। तो बेग साहब उस जमाने में जब आपको पता है अंग्रेज का दौर था, फौज थी, और फौज में जो है वो भर्ती करते वक्त अंग्रेज भी नहीं भर्ती करते थे, अल्लाह ताला ने बंदों को तो कहना कौमों में पैदा किया, तो बाकी जिसका अमल ज्यादा होगा, जिसका तकवा ज्यादा होगा वही कामयाब होगा। तो बेग साहब ये अंग्रेज क्यों नहीं भर्ती करते थे ये कमी?
2: देखिए अंग्रेज जो है ना उनका कल्चर हमारा इस्लामी, हमने पाकिस्तान का नारा लगाया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इस नारे के साथ ही पाकिस्तान बनाया था, जो अंग्रेजों को और हिंदुस्तानी हिंदुओं को बिल्कुल गवार नहीं था, बिल्कुल उनको ये उनके लिए ये एक आफत थी, लेकिन मुसलमानों के लिए आजाद मुल्क और आजाद मुल्क के बाद 1965 की जंग जो है इसने साबित कर दिया कि पाकिस्तानी मुसलमान हो या पाकिस्तान में कोई भी दूसरे मजहब के लोग हों, वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और पाकिस्तान के लिए बेइंतहा कुर्बानियां दी लोगों ने, बेइंतहा कुर्बानियां। हमारे जैसा घर जो सारा उजड़ गया, एक ट्रक था उसी के ऊपर हमारा गुजरो काम चलता था। मेरा बड़ा भाई जो था वो उसको देखभाल करता था, ड्राइविंग भी करता था। तो जब ट्रक हमारा खत्म हो गया तो वो वाल्टन ट्रेनिंग स्कूल वाल्टन रोड के ऊपर, और ट्रक हमारा एक साल तक पड़ा रहा। उसके बाद हमने कबाड़ियों को बेच दिया।
1: एक साहब, ये एक बड़ी तारीख है, हिस्ट्री वाइज आप बातें कर रहे हैं, ये रियलिटी है जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हिस्ट्री है। तो बेग साहब, आप ये अपना दिन मनाते हैं आज भी, जो आप 6 सितंबर का दिन जो है आपकी छतरी के नीचे मनाया जा रहा है, तो बेग साहब उस वक्त भी दो नंबर लोग थे कि मोहतरम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब को गालियां निकालते हैं, तो जब कोई मुस्लिम लीग की बात होती है तो मुस्लिम लीग को कैश कराने के लिए वो मुस्लिम लीग के बन जाते हैं, तो उस वक्त भी दो नंबरी होती थी?
2: दो नंबरी तो हर दौर में रही है, उस दौर में भी दो नंबरी थी, और दो नंबरी जो है ना उसको हमने पिस्पा कर दिया था पाकिस्तान। हमने दो नंबरी होने नहीं दी, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है खयूर अवाम है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत और प्यार करते हैं, और उनकी नजर में जो ऐसे बदकार लोग होते हैं उनका किला कुमा करते हैं।
1: बेग साहब, आपके लीडरान जो है वो बरतानिया तशरीफ लाए हुए हैं, पंजाब की वज़ीर-ए-आला भी बरतानिया तशरीफ लाए हुए हैं, तो ये कौन सा जो नंबर तीन किस्म का जो बातचीत चल रही है जिसपे कुछ चीज निकलेगी बाहर, कोई आप खबर आज 6 सितंबर के हवाले से बड़ी खबर दें?
2: देखें जी, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी दोनों एक पेज पे जैसे चल रहे हैं, अगर चलेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, उनकी मर्जी के मुताबिक ही सब कुछ हो। अगर इनमें दराड़े पड़ गई और ये अलहदा हो गए तो फिर कुछ कोई चीज।
1: तो बेग साहब, दो पेज से क्या मुराद है अपना, क्या जरदारी साहब और नवाज शरीफ पार्टी तो दो पेज पे नहीं है?
2: दो पेज पे चले आ रहे हैं आज तक, इसीलिए हुकूमत है। अगर दो पेज पे ना होते तो हुकूमत जो है नहीं होती।
1: बेग साहब देखें, जरदारी साहब ने खपे पाकिस्तान का नारा लगाया, दूसरी बार उनको सदारत मिल गई। नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान का नारा लगाया, तीन बार उनको वजारत उज़्मा मिल गई और चौथी बार उनके भाई को वजारत उज़्मा मिल गई। तो बेग साहब जो
2: राय साहब आपकी बात बड़ी हो
1: जी जी,
2: अहमदा भी जो है ना वो सियासी जमातों के लीडर ही होंगे जिनको वजीर आजम और जिनको सदर बनाया जाएगा, और वो इलेक्ट आएंगे, अवामी नुमाइंदे होते हैं, वो खुद नहीं बन के आ जाते हैं, अवाम उनको वोट देती है और अवाम की ताकत के जरिए वो आते हैं मैदान अमल।
1: तो बेग साहब बड़ी अच्छी बातें आपने की, आप पाक फौज के साथ काम करते रहे, आपका बिजनेस था, आपने इतनी बड़ी खबर बताई कि आपके ट्रकों पर जो असला जाता रहा, आपने ये बात बताई आपका ट्रक भी जो है तबाह हुआ और कितना अरसा पड़ा रहा उसका, फिर आपने उसको कबाड़ी के आगे भेजा। बेग साहब ये बड़ी तारीखी बातें कर रहे, आगे मेयर साहब ने बड़ी तारीखी बातें की। बेग साहब आखिर में आप कुछ कहना चाहें?
2: मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी लोग जो है पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और पाकिस्तान के लिए बेइंतहा कुर्बानियां भी देते हैं, और ये जो दो नंबर के लोग हैं इनसे बचना चाहिए। इनको पाकिस्तान का इल्म ही नहीं कि पाकिस्तान किन किन मुश्किलात से निकल के यहाँ तक पहुंचा है। लिहाजा पाकिस्तान पाकिस्तान है, और पाकिस्तान को कोई बुरी नजर से देख भी नहीं सकता, जो देखेगा उसका किला कमा किया जाएगा,
1: किला कमा किया जाएगा। बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
2: थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया मैम, मशहूर आपने मुझे वक्त दिया।
1: सवा नाजरीन, ये थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के चीफ कोऑर्डिनेटर मोहतरम मिर्जा रहमतुल्ला बेग साहब। सवा हमारे साथ साथ रहिए, अगले मेहमान की तरफ बढ़ते हैं।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: भी मिला, उस पर भी बहुत सारी हमने उस पर भी हमने सर्वे किया। तो थोड़ी सी बात, छोटी मोटी बात होती है, इतनी बात तो होनी चाहिए। अक्सरियत जब किसी के साथ होती है तो जमहूरियत में 99 वाला जीता है या 1% वाला जीता है।
1: देखिए आपकी बात सही है, और उसके बाद मैं आपको राजा साहब एक बात बड़ी क्लियरली बता दूं ना कि आपका जो काम है ना वो बोलता है। इंसान अगर काम करे तो वो बोलता है, वो जाया नहीं जाता। एक इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो आप है हमारे सामने। आपने 40 साल से इस कम्युनिटी में काम कर रहे हैं। आपकी कम्युनिटी फोरम जो है वो जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैं समझता हूँ हमारी जो पाकिस्तानी तंजीमें हैं उन सब तंजीमों की एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपने 40 साल काम किया। बहुत सारे ऐसे जेलस लोग हैं जो आपके काम को नहीं मानते, लेकिन एम्बेसी ने रिकग्नाइज किया है, ऑफिशियली उसको रिकग्नाइज किया गया है। उन्होंने आपको शील्ड दी है, शील्ड दे के ये बताया है कि आप इस कम्युनिटी के लीडर हैं। आप कम्युनिटी, आप जिस तरीके से देखें जो फंक्शन आगे पीछे तो हर बंदा कर सकता है, लेकिन जो जिस तरीके से आपने कायदे मोहम्मद अली जना के हवाले से जो जो एक बानी है, जो एक फाउंडिंग फादर है हमारे पाकिस्तान के, उनके हवाले से जो आपने तालीमात देते रहे हैं, जो प्रोग्राम करते रहे हैं, देखिए एक ऑफिशियल एक पाकिस्तान के हवाले से जो करते रहे हैं, आपका काम है, काम बोलता है, बोलता है तभी तो आपको शील्ड मिली है। डेनिश एम्बेसडर के सामने, एम्बेसी के अंदर, सबके सामने रिकग्नाइज किया गया कि आपके उस शील्ड पे गालिब मैंने देखा था लिखा हुआ था कम्युनिटी फोरम के चेयरपर्सन। तो जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, जिसमें हम जितनी भी तंजीमें हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान से मुंसलिक पाकिस्तानी कम्युनिटी की, तो उसके अंदर उसका एक हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि काम तो होता है ना राजा साहब, वो बोलता है, कोई माने या ना माने। तो इसलिए जो है मैं बिलीव करता हूँ कि आपको काम करना चाहिए, काम पे इंसान को तवज्जो देनी चाहिए, और हमेशा रस्ते में कैलस लोग होते हैं, रस्ते में बदबख्त लोग होते हैं जो चलते हैं, जो खुद उनको अल्लाह की सजा होती है किसी वजह से, वो जो है खुद वो उस मकाम तक नहीं पहुंच पाते, तो कहते हैं और भी कोई ना पहुंचे। बहरहाल बात यह है कि आपका काम बोला है, आपका काम 40 साल से दुनिया देख रही है, और आपको एम्बेसी ने रिकग्नाइज किया एज अ कम्युनिटी।
0: सिकंदर, जो आप ये सियासी पार्टी हैं, आप ये एक बड़ी सियासी पार्टी में गिना जाते हैं। अगर पार्लियामेंट का ये कोपेनहेगन कमून का बजट देखा जाए तो बहुत सारी आपने तजावीज़ दी, बहुत ज़्यादा बोले। तो सियासतदान का काम ही होता है बोलना, अपनी कम्युनिटी के लिए बोलना, अपनी पार्टी के लिए बोलना, वोटर सपोर्टर के लिए बोलना। जिन वोटर सपोर्टर ने आपकी पार्टी पे नाम कमाया, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाम कमाने वक्त अगर आपको एक आध दो चार वोटें भी दी हैं तो वो अपनी वोट की ज़्यादा कीमत मांगते हैं, जो आपकी वजह से नाम कमाया उसके उससे पीछे हट जाते हैं।
1: राजा साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल, मैंने आपका सवाल सुन नहीं सका।
0: मैंने कहा जब आपकी पार्टी ने काम किया, बाज लोगों ने आपको वोट दिए होंगे, हमने तो नहीं देखा किसने दिए या किसने नहीं दिए।
1: आपकी आवाज नहीं आ रही।
0: मेरी आवाज नहीं आ रही?
1: आ रही है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे ये पता चल रहा है कि आप बोल रहे हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। आप बोले राजा साहब, आप ट्राई करें।
0: सिकंदर, आपने पार्लियामेंट का इलेक्शन जीता, आपने सबका शुक्रिया अदा किया। जब पहली दफ़ा पार्लियामेंट के मेंबर बने, सब ने आपको बारी बारी जो है, सब तंजीमों को आपने बारी बारी पार्लियामेंट में दावत दी, उनके मेहमान आए आपको, उन्होंने सारों ने जो है ना मांगा कि हमें टाइम दे, हमारे मेहमान हुए, आपने चाय पानी सबका किया जो एक पार्लियामेंटेरियन का काम होता है कानून के अंदर रहते हुए। लेकिन उसके बावजूद सिकंदर, जिसने आपको वोट दिया वो अभी तक आप एहसान जितलाता है।
1: राजा साहब मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। मुझे आवाज आ रही है लेकिन मुझे कि कट कट कितनी आ रही है कि मुझे समझ नहीं आ रही। सवाल का मुझे पता
0: चले शायद ये चले, मैं दूसरी तरह बात कर
1: लेता। मेरे ख्याल से दोबारा एक बार ना फोन करें।
0: हाँ, ये बात आपकी, मैं दोबारा फ़ोन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, जिसके लिए आप माजत ख्वाहेंगे, हमारी टेक्निकल ख़राबी थी, किसी ने हमारे टेलीफोन को, सिकंदर के टेलीफोन को हैक करने की कोशिश की और आवाज़ एक तरह से जा रही थी और दूसरी तरह से आवाज़ नहीं जा रही थी। ये टेक्निकल आदमियों से गुजारिश है, भाई अगर आपने ख़ुद कोई बात करनी है, ख़ुद कोई बात कहनी है तो हमारा टाइम आपके लिए हाज़िर है। हमारे बारे में बात करना चाहते हैं तो आपको हम बात करने के लिए आपको खुला टाइम देते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी जो हरकतें कर रहे हैं ये कोई इतनी अच्छी हरकत नहीं है। अगर आपको कोई टेक्निकल चीज़ ज़्यादा आती है تو آپ اپنے پروگراموں کو خود خراب کرنے کی کوشش, یہ لوکل پروگرام ہے, لوکل انفارمیشن آپ کو دے رہے تھے, بجٹ کے حوالے سے انفارمیشن دے رہے تھے, کس طرح کام کیے جاتے ہیں, کس طرح کام ریکگنائزڈ ہوتے ہیں. تو میر جعفر اور میر صادق والا کام آپ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. یہ پارلیمنٹیرین ہیں, یہ کوپن ہیگن پارلیمنٹ کے بھی ممبر ہیں, یہ سابقہ جو ہے قومی اسمبلی کے بھی ممبر ہیں جنہیں آپ ایم این اے کہتے ہیں. تو یہ

0: हरी जी, अभी ये सिटी काउंसिलर भी हैं कोपेनहेगन में, तो बहुत एक्टिव हैं, लिखते रहते हैं और सारे हर वक्त पब्लिक में रहते हैं, तो हमें बहुत सारी एहतियात करनी चाहिए। सिकंदर, आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं।
1: जी जनाब राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: सिकंदर जी, आपको पता है कि टेक्निकल खराबी हो जाती है, टेक्निकल से मुराद है शैतान कहीं भी जो है वो दाखिल हो सकता है।
1: देखिए, शैतान जो है वो कल भी था और आज भी है, तो ये है कि अल्लाह पाक जो है शैतान के शर से बचाए, और ये जो शैतानगियां हैं ये नहीं करनी चाहिए। पर ये है कि हमेशा जो है हमने अपने काम जारी रखना है, करते रहना है, और रास्ते में हजार ऐसे लोग आएंगे जो टांगे खींचने की कोशिश करेंगे। राजा साहब, आप अपना आपको इस वक्त जो है सारी कम्युनिटी मानती है, एम्बेसी ने रिकग्नाइज किया है, तो मैं समझता हूँ आप अपना काम जारी रखें, और ये लोग जो हैक करके प्रोग्राम खराब करने की कोशिश करते हैं, बोले इनको कितना करेंगे, कितनी इन्होंने कोशिश की है, कुछ नहीं हो सकता। बदबخت लोग हैं और इनका ये काम है, ये ऐसे करते रहेंगे। आप अपने काम को जारी रखें, आप अपने जो कम्युनिटी के हवाले से जो आपने एक लीडरी संभाली हुई है उसको आप जारी रखें, चलते रहें, अपना काम करते रहें। और इसी तरह मुझे याद है हमारी उम्र 16-17 साल होती थी, हमने इसी तरह शुरू किया, आपके रेडियो में इंटरव्यू देते थे, हमने बोलते बोलते करते करते सीखा है, आज हम भी 40 साल के हो गए हैं। इसी तरह अगली पौध है उसको भी आप इसी तरह जो है प्रोग्राम करके अपने जो क्या उसे कहते हैं एक जेन बनाएं, लोगों को एजुकेट करें, इंफॉर्मेशन दें कम्युनिटी के लिए, इसी तरह आप काम करें तो आपकी इंशाल्लाह ताला जो लीडरी है ये अगली जनरेशन में भी जाएगी इंशाल्लाह।
0: चले इंशाल्लाह, काम काम बोलता है जो मर्जी करते हैं। सिकंदर देखिए, हम तो हमेशा लोगों को कहते हैं कि तजर्बा करके देख लें कि जब ऊपर थूकेंगे तो थूक मुंह पर आ जाएगा, तजर्बा करके देख लें। लोगों को चाहिए तजर्बा करना चाहिए, और इससे कुछ नहीं होता, जलने से कुछ भी नहीं होता, जलने से धुआं उठता है और धुएं का कतन कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे छोटा मोटा मच्छर तो आगे पीछे हो जाता है लेकिन धुआं खुद ही इंसान को जो है इन्वायरमेंट को नुकसान देता है। सिकंदर, चूँकि हम डेनमार्क में रहते हैं, डेनमार्क के हमारा लोकल प्रोग्राम होता है, इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम होता है, तो सिकंदर आप जो सारी पार्टियां बजट में शामिल हुई जो बंद कमरों के अंदर तो बातें कुछ और करती हैं, जब बाहर मीडिया की बातें होती हैं तो ये अक्सर आता है कि मीडिया का चेहरा कोई और होता है, जब अंदर डिबेट होती है वो चेहरा और होता है, क्या ये बात दुरुस्त है?
1: जी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और अक्सर आप ये देखेंगे कि जो अक्सर ये पार्टीज हैं इनके दो रूप होते हैं, एक रूप वो होता है जो आपको वो इलेक्शन के दिनों में दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, दूसरा वो रूप होता है जब ये वोट लेके बन जाते हैं और ये जब कोलिजन बनाते हैं तो उसमें उनका दूसरा रूप होता है। इसी तरह जब हम नेगोशिएशंस कर रहे होते हैं कमरों बंद कमरों के अंदर तो उधर इनका रूप और होता है। अब आप देखेंगे जितनी भी पार्टीज हैं लेफ्ट विंग पार्टीज हैं ये कितना इन्होंने इस बार माइनॉरिटी वोट लिया है, काफी सारा लिया है, बहुत सारा लिया है। अब इन्होंने 123 इयर्स के बाद जो हुकूमत है आप समझ लें कोपेनहेगन की उसको चेंज किया, आप मुझे बता दें कि माइनॉरिटीज के हवाले से कितना है। अभी छिंगब्या में मसले पड़े हैं तो उसके हवाले से हम बहुत सारी पार्टीज ने कहा कि छिंगब्या के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए, लेकिन आप मुझे बताएं कि एक होती है छिंगब्या में इन्वेस्टमेंट करनी, दूसरी बात है कि क्या आपके जो एज अ माइनॉरिटी जो है क्या आपको रिकग्नाइज किया गया है। ये बजट बताता है ना, बजट पे अगर आप देखें बजट पे आपको पता चल सकता है कि आपके लिए कितने पैसे एलोकेट किए गए हैं, और अगर किसी माइनॉरिटी के लिए किए गए हैं अच्छी बात है, आपके लिए कितने किए गए हैं नहीं किए गए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पार्टीज जो है ये आके वोट हमारे लेती है, और गलती इन पार्टीज की लीडरशिप की भी नहीं होती, गलती तो हमारे लोगों की होती है ना जो इस पार्टी से इलेक्शन लड़ते हैं, हमारे वोट इकट्ठे करके दे देते हैं इन्हें, और बाद में इनकी इतनी तो वो पोजीशन नहीं होती पार्टी में कि वो बाद में फिर बात भी मनवाएं। इसी तरह आप देख लें कि हमारे प्रोग्राम होते हैं उसमें सारे होते हैं लेकिन कभी कोई डेनिश पार्लियामेंटेरियन आया प्रोग्राम में, कभी कोई डेनिश सियासतदान आया नहीं, आया आपकी बेस ही नहीं है, आपको रिकग्नाइज नहीं करता बल्कि आपके साथ कोई तस्वीर ही नहीं बनाना चाहता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हमारे अंदर कुछ कुताहियां हैं, उनको हमें ठीक करना पड़ेगा, उनको हमें उनकी इसलाह करनी पड़ेगी, तो तब हम हमारी जो पॉलिटिकल पोजीशन है वो स्ट्रांग होगी। मैंने तो पहले दिन आप ये बात बताई है, हमेशा की है कि मस्कीन को जो है ना वो होते थे अल्लाह पाक मान बख्शे लाला स्टार साहब होते थे, वो कहते थे मैं कोई लिसा बंदा देखूं ना तो मेरा गुस्सा उतरता ही नहीं है। आपको याद होगा वो कहते थे मैं लिसा बंदा देखूं ना तो मुझे मेरा गुस्सा उतरता ही नहीं है। तो तो दुनिया वो मतलब एक दुनिया का एक दस्तूर है कि आप अगर लिसे होंगे तो सब जो है ना वो आपको दबाएंगे भी और पैर भी रखेंगे आपके ऊपर, और आप अपनी पॉलिटिकल पोजीशन बनाए, आप अपनी जो है वक्त पैदा करें, और वो फाइट से होती है, वो खून पसीने से होती है, वो इस तरह नहीं होता कि आप समझे कि बस ऐसी हो जाएगी, उसकी बहुत जद्दोजहद करती है, जनरेशनों में जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब जाके आपको तस्लीम किया जाता है। तो वही बात होगी ना कि आपने देखा 40 साल किया है, अब आपको रेकग्नाइज किया है, ऑफिशियल रेकग्नाइज किया है एम्बेसी ने, तो ये चीज बड़ी मेहनत कर करके तब जाके कुछ उसका आउटपुट निकलता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी भी इसमें एक आप ये समझ लें कि है एक कोताही है हमारी, कि हम लोग भी इन पार्टीज के हिस्से हैं, बनते हैं, इनके लिए वोट लेते हैं, अपनी सीट तो ले लेते हैं, लेकिन आगे आप उनसे पूछे ना कि आपकी पार्टी ने फिर क्या किया, हुकूमत में आपकी पार्टी क्या कर रही है इस वक्त, बल्दियात में अगर हुकूमत में तो क्या कर रही है। तो ये असल में जब तक हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे तब तक हम किस तरह एक्सपेक्ट करेंगे कोई और हमारे हमारे बच्चों के लिए बेहतरी का सामान करेगा।
0: देखिए सिकंदर, आपको पता है कि टाउट पैदा किए जाते हैं और टाउट को जो है मालिक बड़ा संभाल के रखता है। अब देखें अगर हम लोग यहाँ डेनमार्क में रहते हैं, अगर हम डेनमार्क की सियासत नहीं करते, हमारी टोटल सियासत यह है कि हम पाकिस्तान में चुगलखोरी का काम करते हैं और चुगलियाँ खाते हैं एक दूसरे की, तो बहुत सारी चुगलियों की जो है रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद हो गया। ज़ाहिर है चुगली खाने वाले को याद ही नहीं रहता मैंने कौन सी चुगली खाई और कौन सी नहीं खाई।
1: बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इसलिए समझता हूँ कि हर इंसान अपनी इस्लाह करे, हर इंसान अपने गिरबान की तरफ देखे। मुझे याद है अब ये नहीं याद आ रहा, वो पता नहीं किसका कलाम का वो एक शेर है कि पड़ी अपनी बुराइयों पे जो नजर तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। अपनी इस्लाह करें जी, दूसरों के जो है ना।
0: सिकंदर आपको याद है कि अगर मैं थोड़ी सी, चूंकि आप पाली उस वक्त कोपेनहेगन कम्यून के पार्लियामेंट के मेंबर थे, तो उस वक्त पाकिस्तान के एक बड़े सियासतदान नवाब सुल्फकार खोसा साहब तशरीफ़ लाए थे, आपके वालदे मोहतरम उस वक्त जो जिंदा थे अल्लाह ताला उनको बख्शे, तो वो चेयर कर रहे थे राइट साइड पे राजा अपना क्या नाम है वो राजा इशफाक सरवर, बड़ी पावरफुल शख्सियत है, अब उनका गालबन बेटे हैं उनके MNA हैं, बड़े करीब हैं नवाज शरीफ साहब के, राइट साइड पे तो वो बैठे हुए थे, तो लेफ्ट साइड पे खोसा साहब थे और सेंटर में आपके वालदे मोहतरम थे। तो बहुत सारी बातें वो रिकॉर्ड में, मेरी सारी वो तस्वीर मेरे पास हैं, वो रिकॉर्ड सारा मेरे वॉइस मेरे पास। उसके बाद डी एंग्लेशिया की प्लेटों में जो है बड़ा खूबसूरत जो है वो डिनर दिया गया, खाना खाया साहब ने मिलकर, वो बबड़े खुश हुए खोसा साहब। खोसा साहब ने 3-piece सूट पहना, बड़ा कीमती सूट था, उन्होंने बड़ी बातें उस दिन की कि जब वो पढ़ने के लिए इंग्लैंड में आए तो बड़ी बातें उन्होंने अपनी ज़िंदगी की। ये एक तारीखी हिस्सा होता है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और हमने उस वक्त भी देखा कि दरवाजों पे लोग खड़े हुए बाहर, टाउन हॉल के दरवाजे के बाहर एक दूसरे को रोका जा रहा था।
1: हाँ, वो असल में कुछ मैं वो बता रहा हूँ ना, कुछ ऐसे हमारे एलिमेंट साइंस कम्युनिटी के जो जिन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है सारी कम्युनिटी को, और उनका हमेशा यही एक काम रहा है, उनका हमेशा यही एक रोल रहा है, नेगेटिव गंदा रोल। बहरहाल बात यह है कि राजा साहब उस वक्त भी मैं आपको बताऊं कि हमारे जो मेरा मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब उस वक्त बना ना काउंसलर, तो मुझे लोग कहते थे कि यार हमने ना बेशक हमारे मेंबर पहले बनते थे कि हमने आज तक नजर अंदर से कोपेनहेगन असेंबली नहीं देखी, तो मतलब किसी ने नजदीक नहीं भटकने दिया। तो मुझे याद है मेरे वाले साहब ने कहा था कि पुत्र जब बनोगे ना तो असेंबली के दरवाजे तुमने खोल देने हैं, इस कम्युनिटी के लिए खोल देने हैं, कोपेनहेगन के शहरियों के लिए खोल देने हैं। तो आपको फिर याद है कि हमने फिर हर वो मुमकिन कोशिश की और हमने दरवाजे खोले, हमने सबको कहा अहलन वसहलन, आओ और देखो यहाँ पे ये, और ताकि आप लोगों के दिलों में भी ये बात बने, ये ख्वाहिश पैदा हो कि यार हम भी अपने बच्चों को भेजें। पहले तो मतलब शायद किसी ने इसलिए नहीं दिखाते होंगे ना कि और किसी के दिल में ना आ जाए कि हमें बनना चाहिए। तो मुझे वाले साहब ने कहा था, मेरे वाले साहब अल्लाह उनको जनतों में जगह थे, बड़ी ग्रेट शख्सियत है और वो हमेशा कम्युनिटी का बेहतरी चाहते थे और वो हमेशा हक के साथ खड़े होते थे और जुल्म के खिलाफ लड़ते थे। वो आप उनकी हिस्ट्री देख लें, उन्होंने हमेशा जुल्म को शिकस्त दी है, हमेशा जुल्म के खिलाफ वो लड़े हैं, हमेशा उन्होंने जुल्म को शिकस्त दी है, हमेशा उन्होंने जुल्म को बिल्कुल नेस्त नबूद कर दिया। तो इसलिए ये है कि उनकी तालीम है, उनकी पढ़ाई है। तो उस वक्त भी मेरी यही कोशिश थी कि मेरा डेनमार्क मेरा मुल्क है, इसमें मैं پیدا ہوا ہوں, یہی میرا ملک ہے, پاکستان میں میرے روٹس ہیں, پاکستان سے مجھے محبت ہے. میری ہمیشہ یہ کوشش تھی, ہمیشہ یہ کوشش تھی کہ پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان بہتر سے بہتر حالات پیدا کر سکیں. ابھی میں آج کل یہ میرے ذہن میں بار بار آتا ہے کہ یار کیوں نہ ہم کوپن ہیگن کو اور اسلام آباد جو ہے ان کو فرینڈ شپ سٹیز بنایا جائے, اس کے لیے کام کیا جائے. تو میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان کا بھی فائدہ ہو, ڈنمارک کا بھی فائدہ ہو, سب اپنے خوش رہے, سب اچھے طریقے, ہر طرف خوشحالی ہو, میرے ان دونوں ملکوں میں خوشحالی ہو. تو میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے. اس وجہ
0: سکندر آپ کی سوچ بڑی پازیٹو ہے. آپ دیکھیں نا, اگر ڈنمارک کمزور ہے تو ہم کمزور ہیں, یہ ہمارا ملک ہے. ڈنمارک ترقی کرے گا, ہم ترقی کریں گے, تو اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں ہے.
1: نہیں, میرا دل کرتا ہے کہ پاکستان سے جو اتنا سارا ٹیلنٹ ہے اس سے ڈنمارک فائدہ اٹھائے, اور جو ڈنمارک کی اتنی ساری نو ہاؤ ہے, اس بہترین ایڈمنسٹریشن ہے, وہ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں, وہ کانسیپٹ جو ہیں, وہ پاکستان اس کو اڈاپٹ کرے تاکہ پاکستان بہتر سے بہتر ہو, ڈنمارک بہتر سے بہتر ہو. میری ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے, ہمیشہ میں نے اس چیز کے لیے کام کیا ہے. ابھی کوپن ہیگن میلے کے لیے میں کام کر رہا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ اسلو میں میلہ ہوتا ہے ہر سال اگست کے مہینے میں, تو ہمارے یہاں پہ کیوں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو اصل جو کسی نے اگر کسی لیول کا میلہ کیا ہے تو وہ جو یہ ینگ لڑکے ہیں یہ ویل بی پارک میں کرتے ہیں, مطلب وہ ان کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے میلے کا, وہ کرتے ہیں بڑے بہترین طریقے سے کرتے ہیں. تو ہر سال وہ کرتے تھے, اب ایک دو سالوں سے وہ نہیں کر رہے. وہ اپنی جیب سے وہ پیسے دیتے تھے. تو یہ کس طرح ہے کہ اس میلے میں جب وہ جو ویلبی پارک میں ہوتا ہے میلے میں, اس میلے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے. اس میں میں لارڈ میئر کو لے کے گیا.
0: سکندر وہ بڑا کامیاب میلہ تھا, پہلے فری انٹری ہوتی تھی, پھر لوگوں نے رائے دینی شروع, تو رائے آتی ہے لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, پھر اس کے پیسے لگنا شروع ہو گئے, تو پھر آہستہ آہستہ جب وہ پیسوں کا اور پارکنگ کا مسئلہ بنتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو پیسے لگانے والا ہوتا ہے بےچارا, وہ اس کے اپنے اخراجات بھی ہوتے ہیں.
1: بالکل, پھر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ جو یہاں کی جو اسمبلی ہے کوپن ہیگن کی, کہ وہ اس کے لیے فنڈز نہیں دیتی, جبکہ وہ اتنا بڑا کلچرل پروگرام ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں. مطلب میں اگر ہم مجھ سے پوچھیں تو 14 اگست کا میلہ یا انہوں نے کیا ہے یا ہم نے کبھی کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا جہاں ہم نے ہارون کو اوپن کوپن ہیگن اسمبلی کے باہر جو ہے ہم نے جب کیا تھا, اس میں اوپر وہ بڑی سکرین لگا کے ہم نے کیا تھا, وہاں
0: بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے.
1: ہاں, تو میرا مقصد یہ ہے کہ کہنے کا کہ وہ کیوں ایسا کیوں ہے کہ اتنے بڑے کلچرل پروگرام کو جو ہے بجٹ کا حصہ نہیں بنایا جاتا, یا ان کو فنڈز نہیں دیے جاتے, فیسٹیول پھولے کے حوالے سے نہیں دیے جاتے. تو یہ بھی بات میں نے ابھی آپ نے شاید کل وہ دیکھا ہوگا, اس میں میں نے ابھی فیس بک پہ لگائی تھی, جہاں میں نے کلچر اور ریکریشن جو کمیٹی کا جو میئر ہے, میں نے اس کے ساتھ اسمبلی کے فلور کے اوپر یہ بات کی, اور اس نے مجھے کہا کہ اس کے اوپر ہم غور کریں گے. میں نے کہا کہ پچھلی لارڈ میئر میرے ساتھ گئی تھی وہاں پہ, اس نے وہاں سپیچ بھی کی, اس نے دیکھا, ڈینش امبیسڈر یاکم نیل عرف تھا وہ بھی گیا وہاں پہ, ہم نے کیک کاٹا پاکستان کے جشن آزادی کا, ہم نے وہاں پہ کیک کاٹا. 75 ایئرز کی جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں ڈنمارک اور پاکستان کے درمیان جو پچھلے سال تھی, اس کے حوالے سے ہم نے وہاں کیک کاٹا, جس میں میں نے, ڈینش امبیسڈر نے, پاکستانی امبیسڈر شعیب سرور صاحب اور لارڈ میئر نے, ہم چاروں نے وہاں کھڑے ہو کے کیک کاٹا سٹیج پہ. تو وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے, اتنا بڑا میلہ تھا وہ. تو کیوں ایسی کیا بات ہے کہ جو ہماری میونسپیلٹیز ہیں وہ ان چیزوں کے لیے پیسے نہیں دیتی؟ یہ تو ہر کمیون میں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے میں نے میئر سے بات کی, وہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ میں کلیئر بات کر رہا ہوں. اس کے اوپر ہم نے ایک پشید نچھید بھی بنوایا ہے, اس کا پشید نچھید کا نمبر میں بھی آپ کو بتاؤں گا, آپ خود جا کے چیک کریں کہ اس کے لیے بھی پیسے لوکیٹ کیے جائے. دیکھیں اب اس پہ آگے اب کیا ہوتا ہے.
0: سکندر میں تھوڑی سی ہسٹری کی بات کروں, شاید تو اس وقت آپ کو یہ باتیں یاد نہیں ہوں گی, جب کوپن ہیگن ٹاؤن ہال کے باہر جو میلہ کے ایک دفعہ آپ نے پروگرام کرایا تو بڑے لوگ آئے, کافی تعداد میں لوگ آئے. تو جب اس کی باری آئی لوگوں نے سب نے اسٹیج پہ چڑھ کر فائدہ اٹھایا, تقریریں کی, کچھ منتیں کر کے تقریریں کر رہے تھے. تو جب بل آیا اپنا سکندر تو لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے, جی ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے وہ شیئر کریں گے. تو اللہ جنت نصیب کرے, آپ کے والد محترم نے 1000 کروڑ انہوں نے مجھے دیا, 2000 کروڑ میرے خیال ہے کہ راجہ طارق نے جو اپنی پارٹی جمع کر کے, 3000 جو مجھے پڑتا ہے, لیکن آپ کے والد محترم کا مجھے یاد ہے. तो वो तकरीबन जब बिल आया तो मैं परेशान हो गया, मैंने वाइफ से बात की, मैंने कहा किसी और ने, उस वक्त तो लोग बड़े दावे करते थे फायदा सब ने उठाया, तो उसने वाइफ ने मुझे 10,000 करोड़ दिया, जमा किया हुआ था पैसे मेरे फिर भी नहीं पूरे हो, तकरीबन 18,000 और देना पड़ता था, तो मुझे पता है कि वो मैंने किस तरह बिल जो है वो अदा किया। उसके बाद पार्लियामेंट में स्टेज लगा, रित ब्यागो थी उस वक्त, तो लॉर्ड मेयर थी, मैं उनको लाया, सब ने तकरीरें की, सब ने फोटो बनाए, सब ने आगे नारे हर चीज़ किया, तो उसका बिल भी जो मेरे खाते में पड़ा। तो सिकंदर ये हिस्ट्री है, लोगों को मेरे ख्याल है इतनी हिस्ट्री, मेरा दिल है मैं हिस्ट्री बताया करूँ लोगों को। चलें, आपने अच्छा किया आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी इनिशिएटिव लेता है, जो भी मेहनत करता है, नियत करता है डरमार को, पाकिस्तानियों के लिए काम करता है, कोई भी प्रोग्राम करता है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये जो आपने बात की है सिकंदर के, हर जगह अगर बजट दिए जाते हैं तो इस बड़े मेलों में बजट होना चाहिए,
1: बिल्कुल होना चाहिए, ये एक हमारा हक बनता है, बिल्कुल हक बनता है। मैं
0: तो ये जो अभी बजट डेनमार्क कोपेनहेगन का पार्लियामेंट का पास हुआ है, तो इसमें जो जान जान जितनी चीजें आपको पता चली है, क्या उन्होंने रखा है कब?
1: ये मैं इस वक्त राजा साहब जब ये अभी पास होने लगेगा ना, तो उस संडे के रोज ना मैं आपको एक एक आना जो है ना इस बजट में कहाँ जा रहा है मेरे पास पूरी, क्योंकि जाहिर बात है मैं उस नेगोशिएशन में बैठा रहा हूँ और करता रहा हूँ, तो मेरे पास एक एक फिगर है कि एक एक रुपया, एक एक क्रोन, एक एक आना कहाँ जा रहा है, वो मैं मुकम्मल लिस्ट होगा वो मैं आपके सामने रखूंगा, और उसमें फिर मैं आपको वो सीधा सीधा जो चीजें होंगी जो एक और फिक्र के हवाले से जो है चीजें होंगी उस पर हम फिर बहस करेंगे।
0: सिकंदर एक और चीज है जो ये लोग जो एक दूसरे की शिकायत करते हैं, रहते डेनमार्क में हैं, इस मुल्क का खाते हैं, इस मुल्क का स्कूल का सिस्टम यूज़ करते हैं, इस मुल्क की हर चीज़ जो है वो टैक्स यूज अस्पतालों को दिया जाता है, और आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि बजट की बात की थी कि ये दांतों का इलाज, जो ये नज़र का इलाज जो है बच्चों में, स्कूल में तो बच्चों का 18 साल की उम्र तक या 21 साल की उम्र तक, मेरे ख्याल 18 ही है, फ्री होता है इलाज, लेकिन जब किसी की टांग टूट जाए, किसी की बाजू टूट जाए, तो फौरन एम्बुलेंस आती है, उसको जो है अस्पताल ले जाते हैं, और टोटली इलाज वो फ्री होता है।
1: बिल्कुल ऐसा ही है, वो ये सरमायादारा निजाम है, क्योंकि ये मैंने किसी ने मुझे कही थी बात बड़ी दिलचस्प कि आपकी टांग टूट जाए ना तो आप फैक्ट्री में आके काम नहीं कर सकते, आपका दांत टूट जाए ना तो तब आप फैक्ट्री में फिर भी आके आप काम कर सकते हैं, इसलिए टांग के टूटने पे फ्री वो क्या कहते हैं वो है मेडिकल वो हेल्प है, दांत टूटने पे नहीं है, तो ये पुराने सोच के तहत ये चीजें हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन चीजों को भी फ्री करना चाहिए। बच्चों का जो अभी एक सर्वे निकला है, स्कूल ही ले हुआ है, उन्होंने एक सर्वे बताया जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी 3 सबसे बड़ी डिमांड्स क्या है, उसमें 3रे नंबर पे जो है फ्री खाना स्कूल में, क्योंकि गरीब अमीर जो भी है हम अपने बच्चों को जो एक दिन में का जो सारा दिन वहां स्कूल में गुजारते हैं वहां अच्छा खाना हो, प्रोटीन किस वाला खाना हो, अच्छा खाना हो तो वो दिया जाए, तो इसके बावजूद भी आप देख लें कि हमने ये बात की थी वो नहीं माने, इन्होंने ये कहा कि ठीक है हम आपको बजट में ये क्या लिख देते हैं कि हमारा वादा है मुश्तरका एक, मतलब जिसे हम हिंसिक सिखलाएं कहते हैं कि ये हम आगे आने वाले बजट में इसको हम करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमने कहा कि हमारे लिए इनफ नहीं है, हम चाहते हैं कि इसको मजीद करें, अगर मिनिमम आप ये करें कि 0 से 3 क्लास तक जो है इसको फिर पहले करें फिर आगे इसको बढ़ाते जाएं, तो हमने तो बहरहाल ये है कि हमने तो फुल प्रेशराइज किया, हमने जिसे कहते ना एक ब्लॉक बन के हमने फुल प्रेशराइज किया और हम मजीद करते रहेंगे, लेकिन हम इसलिए अपनी आन और शान के लिए कि हम खड़े हुए लॉर्ड मेयर के साथ वो तस्वीर बनाई ले भी हमने बजट बनाया, वो हमारी ना सियासत ऐसी है ना शौक ऐसे हैं, हम लोग जो हैं हम अवाम के लिए गए हैं, हम किसी वहां दोस्ती करने के लिए नहीं गए, हम वहां पे क्या कहते हैं अपने करियर बनाने के लिए नहीं गए, हम हमारी जो पार्टी है हम अवाम के लिए गए हैं, हम आम अवाम के लिए गए हैं, आम लोगों के लिए गए हैं, मिडिल क्लास के लिए गए हैं, गरीब तबके के लिए गए हैं, सोशल उस साइड लोगों के लिए गए हैं, उनके लिए हमारा जो मैंडेट काम करता है, और जब तक इस चीज में फेयरनेस नहीं आएगी, जब तक बजट में फेयरनेस नहीं आएगी तो हम फिर तनकीद करेंगे और हम भरपूर जो है पार्लियामेंट के फ्लोर पे असेंबली के फ्लोर पे जो है।
0: सिकंदर बहुत सारी जो तकालीफ की बातें हैं लोग आकर हमसे करते हैं, तो जाहिर है हमने पूछने होते हैं सवाल आप जैसे लोगों से पूछने होते हैं जिन लोगों की रसाई होती है। ये पार्किंग का सबसे बड़ा मसला जो है वो कोपेनहेगन में मसला है, पहले वीकेंड पे फ्री होती थी, वीकेंड पे भी पार्किंग आप फ्री नहीं, 24 घंटे आपको पेमेंट ही करनी पड़ती है, तो कम अज कम छुट्टी वाले दिन भी फ्री होनी चाहिए और सस्ती होनी चाहिए, जुर्माना भी कम होना चाहिए।
1: अनफॉर्चुनेटली इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो अल्टरनेटिव पार्टी है एलटीएनसीयू वो बहुत सख्त जो है इसके खिलाफ है और एसएफ इनिशिएशन भी है लेकिन एलटीएनसीयू बहुत ज्यादा इसके खिलाफ है और वो उन तीन पार्टीज की मेजोरिटी की वजह से जो है इस पे बड़ी मुश्किल से काम इस पे बहुत मुश्किल है काम करना। भारत इस पे भी हमने किया है और मजीद जो जो पार्किंग है वो उनको बढ़ाने का फैसला किया गया है लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये इस चीजों को समझ नहीं है, इनका बस चले तो ये सारे कोपेनहेगन को एक पील फ्री जोन बना दे।
0: तो क्या दरख्तों के साथ भी गाड़ियां बांध कर पार्क करने का सिस्टम बन सकता है, पर उस पे भी पैसे मिलते हैं?
1: बस इनको क्या बंदा समझाएं। राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मैं
0: शुक्रिया आपका सिकंदर, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया, मालूमात दी। सामने नाजरीन, हम गप शप की शक्ल में सारे सवालात कर लेते हैं ताकि सबको समझने में आसानी हो। इस जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क से जमहूरियत से ही फ़ायदा उठाया जा सकता है, डिक्टेटरशिप से कतर कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। आपने वोट देनी है, आपने जिसको वोट दी है, पिछली दफ़ा में असलम मेहर साहब जब एक प्रोग्राम मेरे साथ कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि सिकंदर मैंने आपको वोट दी है, मेरा हक बनता है मैं आपसे पूछूं।
1: देखें असलम मेहर साहब जो है ना वो कोई बड़ी गैर मामूली वो शख्सियत है। असलम मेहर साहब आपको ये समझने की जरूरत है कि आज मीडिया इलेक्ट्रॉनिक है, आज मीडिया आप समझते हैं कि सोशल मीडिया पे है हर तरफ, लेकिन असलम मेहर साहब जो है ये उस दौर के सहाफी है। आपको याद होगा कि उस वक्त मीडिया करके रेकग्नाइज था तो वो जंग अखबार होती थी। उनको ये शर्फ हासिल है कि ये जंग अखबार में लिखा करते थे, ये जंग अखबार में खबरें देते थे, ये जंग अखबार में कॉलम लिखते थे। ये असलम मेहर साहब जो है बड़ी गैर मामूली शख्सियत है। इनका मैं आपको बताऊं तो किसी को नहीं पता, आज मैं आप लोगों को बताता हूं उनके बारे में। असलम मेहर साहब जो है आज भी 4 घंटे हर रोज रात को बैठ के एनालिसिस करते हैं, बैठ के लिखते हैं, बैठ के सोचते हैं, बैठ के कम्युनिटी को एनालाइज करते हैं हर रोज। आज भी इस एज में भी हर रोज रात को 4 घंटे बैठ के जो है वो अफसे करते हैं, देखते हैं, एनालिसिस करते हैं और आज भी अपना वो अपनी जो एफर्ट है इस कम्युनिटी की बेहतरी के लिए वो कर रहे हैं। हम बच्चे थे, हम छोटे होते थे, मुझे याद है कि असलम मेहर साहब जो है वो इस कम्युनिटी के लिए एक सहाफी के अलावा भी एक सीनियर जर्नलिस्ट के अलावा भी एक सीनियर कमेंटेटर के अलावा भी जो है वो हमेशा काम करते थे और आज भी करते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि और कितने लोग होंगे इस कम्युनिटी में जो सिंसियर होके इतने घंटे आज भी हर रोज लगाते हैं? तो असलम मेहर साहब बड़ी गैर मामूली शख्सियत है और वो इस कौम का, इस कम्युनिटी का एक हीरा है। असलम मेहर साहब इस कम्युनिटी का एक हीरा है। ये अब हमारे ऊपर है कि हम उस हीरे को समझ पाते हैं, उस हीरे को रेकग्नाइज कर पाते हैं और क्या हम उस हीरे से क्या फायदा उठा पाते हैं। मैं तो इस चीज पे बड़ा यकीन करता हूँ कि अगर आपको ये नहीं ना पता आप कहाँ से आए हैं तो आपको ये भी नहीं पता आपने कहाँ पे जाना है। इसलिए मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ, मेरे बुजुर्ग तो अब चले गए हैं इसलिए मेरी हमेशा कोशिश होती है मैं बुजुर्गों के साथ बैठूं, मैं ये जो सच्चे दिल वाले, सच्ची नीयत वाले और जो दर्द रखने वाले कम्युनिटी के लिए वो उन बुजुर्गों के साथ मैं बैठूं और उनसे सीखूं, उनसे समझूं और मेरी जो थॉट्स है, मेरी जो सोच है वो भी उनके सामने रखूं और ताकि वो उसको चैलेंज करें उससे, ताकि बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट जो है वो निकले। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि असलम मेहर साहब जो है ना, मैं तो यकीन करें उनको सलूट करता हूँ। वो बेहतरीन वो बिल्कुल गैर मामूली शख्सियत है और मैं समझता हूँ कि वो इस कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा तोहफा है।
0: सिकंदर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
1: थैंक यू जी, थैंक यू।
0: सामान नाजरीन, ये थे मलिक सिकंदर सदीक, इन्होंने जो बातें की। सामान नाजरीन, हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर कोई जवाब देना चाहता है, अपनी बात करना चाहता है, इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहता है तो उसके लिए अदारा आपकी आवाज़ का टाइम जो है हाजिर है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।
1: आउज़ बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामाई नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जिस तरह हमने सोशल मीडिया पर आपको बताया था कि आज हमारे लाइव मेहमान होंगे, एक तो हमारे थिंक टैंक हैं, दूसरे हमारे तजिया निगार हैं और दोनों सियासतदान भी हैं और गहरी नज़र रखते हैं कम्यून की सियासत पर, लोकल सियासत पर। और आजकल आपको पता है ना जी कि बजट भी जो है पेश हो रहा है, बजट पर भी बहुत सारी बातें जो होती हैं। तो हम शुरू करते हैं, दो मेहमान हैं, मैं तारफ़ करा दूँ, सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब और अदनान अली अमीन हमारे साथ। दोनों को हम खुश आमदीद कहते हैं आपकी आवाज़ पर।
2: जी राजा साहब, आपको भी, आपके लिसनर को भी और आपके नाज़रीन जितने भी हैं और अदनान साहब को मैं इज्जत से अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। शाह साहब, शुरू करते हैं, सवाल है, मैं आपसे पहला सवाल करना चाहूँगा, बारी बारी जवाब दीजिएगा। सबसे पहले बताइए कि इस साल के कम्यून के बजट की सबसे आम तरजियात क्या है जो आपके पास इंफॉर्मेशन है?
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस वक्त जो सबसे बड़ी तरजियात होनी चाहिए वो ये है कि जो इस वक्त क्राइसिस में डेनमार्क चल रहा है उसको कैसे निकाला जाए, वो बजट में नहीं है। और जो बजट में है वो यही है कि कितने मकान बनाए जाए, लाइट हाउस बनाए जाए, कितनी सड़कें बनाई जाए, कितनी पार्किंग प्लेसेस बनाए जाए, कहीं कहाँ से स्कूलों की जो आमदन है वो स्कूलों को कहाँ से कट किया जाए, कहाँ जो बच्चे हैं उनको किस तरह सहूलतें जो हैं उसको माइनस किया जाए। तो ऐसी ऐसी बातें जो हैं, जो बजट अभी 100% बजट की जो शक्ल है वो रिटन सूरत में कहीं भी नहीं आई, सिर्फ जो डिस्कशन हो रही है, जो हम कॉस्मोपोल टीवी और दूसरे अखबारों से हमें जो थोड़ी बहुत खबर मिलती है या कोई तजिया नगार डैनिश जो है वो बात करता है तो उसकी वजह से। लेकिन सबसे बड़ी चल रही है कि छोटी जो वेस्ट आइल की जो कम्यूने हैं इसके अंदर अभी तक वो गर्मा गर्मी नजर नहीं आ रही जो कोपनहेगन कम्यून के अंदर आ रही है।
1: कम्यून के अंदर आ रही है, बिल्कुल शाह साहब आपने बजा फरमाया। अदनान, यही सवाल आपके लिए है, आप क्या कहते हैं क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को देखते रहते हैं करीब से।
3: सर, इस वक्त देखा जाए ना, सबसे बड़ी बात यह कि जो बजट है ना ये बड़े मुश्किल है क्योंकि जो मसाइल हैं उनको देखा नहीं जा रहा और उन पे बहुत सारा क्या कहते हैं जिसका सेविंग करने की कोशिश की जा रही है। और बेस्तान में भी वही सेम चीज चल रही है और वही कूपन है हमें चल रही है इस वक्त। और इस चीज को देखा जाए ना टेक्टिकली तो ये प्रॉब्लम्स पाएगा क्योंकि जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि स्कूल्स, ओल्ड रूम्स और ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। मगर उसके अंदर बंदा देखे ना सारी कम्यूनों को एनालाइज करे और जिन जिन से हमसे हमारे रबते भी हुए हैं और जिन जिन से हमारी बात भी हो रही है और जो टेबल पे बातें भी हो रही हैं वो यही है कि हमें समझ नहीं आ रही कि इतना सारी बजट ये करके तो लॉन्ग से ट्रिप पे ये नुकसान है। और इस चीज़ों पर कुछ पार्टी साड़ गई हैं कि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि मसला ये होता है कि एक और चीज है जो मैं कह दूं कि इस साल जो पैसे कम्यून को मिलते हैं ना स्टेट पुलिस एक्ट पुलिस है वो भी डीप तरह से कम्यूनों को दिए गए हैं। तो देखा जाए तो इससे डीपली कुछ कम्यूनों के अंदर जो स्पेक्टिक था ना कि उनको मिलना है उनको वो नहीं मिला तो उससे क्या कहते हैं उनकी परेशानी थोड़ी ज्यादा हो गई है। और मैं ये कह सकता हूँ कि वेस्ट आइलैंड पे भी काफी क्या कहते हैं टफ टाइम है और काफी पार्टियां जो है वो
1: लेकिन ये एक सवाल पैदा होता है कि आम शहरी के लिए इस बजट में सबसे बड़ी फायदे वाली क्या बात हो सकती है?
3: सर, मैं अभी देखो मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें उनको कोई फायदा भी है क्योंकि फायदा उस वक्त होता है जब आप बच्चों वाली फैमिली को या जो बुजुर्ग हैं जिस तरह ये इस तरह की चीजों पे बंदा क्या कहते हैं फोकस दे। मगर जब आप शुरू से ये बजट के अंदर लिख दें कि जो ये वेल्थी वाले डेफिनेटली ऊपर जो बैठे होते हैं कुछ सियासतदान उनको मालूम होता है वो शुरू से लिख दें कितने पैसे बचाने हैं ना तो फिर शुरू से ही क्या कहते हैं एक माहौल बड़ा चेंजेस हो जाता है। अभी जैसे कोपेनहेगन कमून है, उसके अंदर जो जो खबरें बाहर आ रही हैं, मुझे तो वाकई समझ नहीं आ रही कि ये SF इंग्लिश लिस्ट वाले बैठे हुए हैं, ये विंगस्टर कंसर्वेटिव वाले बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पॉलिसी नजर बाहर आ रही है वो तो उनकी आ रही है नजर। तो इस तरह से बंदा देखे ना तो बहुत सारी बातें अंदर से बाहर निकलती जा रही हैं, आती जा रही हैं, क्योंकि जो वो होता है ना एक सिस्टम होता है ह्यूंग स्वा का, वो करीबन लोग जो अपना राय दे सकते हैं स्कूल और सारे लोग, वो कल तक खत्म हो गए हुए हैं, आज मतलब 3 तारीख तक। तो मतलब समझे कि कल परसों तक ये नेगोशिएशंस जो
1: मतलब
3: है ना
1: बिल्ली
3: ये
1: जो है वो
3: खास
1: थैले से बाहर आ
3: करके
1: जाएगी। शाह साहब आप बताएं, शाह साहब आम आदमी को क्या फायदा हो सकता है इस बजट में बड़ा?
2: जी, इस वक्त तो आम आदमी क्या, इस वक्त आप देखें कि पार्टियों के अंदर इनकलाब आने शुरू हो गए हैं। आप देखें कि वेंस्ट्रा के अंदर जो है वो अपने पार्टी फोरमैन के खिलाफ जो है वो खड़े हो गए हैं। पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब आ रहा है, क्योंकि लैंडसमैन जो हैं, जो जराइत का काम करते हैं, उनके अखराजात जो हैं वो आसमान से बातें करने शुरू कर दिए हैं। और फिर उनके बच्चे भी हैं, जैसे अभी अदनान ने बताया कि उनके बच्चे हैं, उन्होंने स्कूल में जाना है और दूसरी जगह पे, और उनको जो बेंजीन और डीजल की गाड़ी है उनके अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसी तरीके से ये जो चीजें हैं ये सामने नहीं आ रही, बल्कि पिछले इस हफ्ते में जो प्रोटेस्ट हुआ है अपना लैंडसमैन का फलके सिंह के सामने, वो भी खुल के सामने आ गया है। तो मसला ये है कि SF और इनिस लिस्टर ने जो वादे किए थे अवाम के साथ वो सवालिया निशान बन चुके हैं, क्योंकि जो अभी तक ना SF वाले बता रहे हैं, जैसे कि अदनान ने बताया, ना SF वाले बता रहे हैं, ना इनिस लिस्टर वाले बता रहे हैं, ना ही उनकी जो स्पोर्ट पर दूसरी रेडिकल वगैरह या सोशल डेमोक्रेट ये बता नहीं रहे कि हमने कौन कौन सी चीजें जो है वो फेस की हैं। हालांकि इनको चाहिए, आज आप देखें तो इस वक्त पेट्रोल जो है वो 18 करोड़ का हो गया है, ये डेनमार्क की हिस्ट्री का सबसे महंगा तरीन पेट्रोल हो गया है। और इससे आप ये देखें कि अगर कोई फैमिली है जिनके पास पेट्रोल गाड़ी है, और मेजोरिटी के पास इस वक्त कोपेनहेगन और वेस्ट आइन के अंदर जो है वो पेट्रोल और डीजल गाड़ी है, और वो इतनी महंगाई में जब उनकी वही पे है और वही पेंशन है, हर एक चीज है, तो वो किस तरह करेंगे? कम्युनिटी इसके ऊपर बात नहीं कर रही, क्योंकि असल में हम स्टेट के तो स्टेट ने तो हमें इजाजत दी है कि आप पूरे डेनमार्क के अंदर कहीं जाकर रह ले, लेकिन जहां हम जाकर रहते हैं वो हमारी कम्यून होती है, और कम्यून जो होती है वो एंस वाली होती है, अपने जो अवाम होती है जो उसके उसके अंदर रजिस्टर्ड होती है, फल्क होती है। तो हमें ये नहीं समझ आ रही कि एल्बर्सोन कम्यून जो है उसने अभी तक कोई ऐसी चीज शाया नहीं की कि हम देखें कि इसके बजट में कौन सी जो है वो अवाम दोस्त है। मैं तो यही कहूंगा, जैसे मैंने पिछली दफा कहा था कि ये अवाम दोस्त नहीं बल्कि ये अमीराना बजट जो है वो सामने
1: ये
2: आ रहा है
1: अवाम दोस्त
2: जो
1: नहीं, ये अमीरों का बजट है। अदनान आप क्या कहते हैं कि क्या मौजूदा बजट अवाम की जरूरियात तो पूरी करता है, क्या हकीकी जरूरियात पर पूरी कर सकता है, पूरी करता है या कर सकता है?
3: सब जिस तरह से बजट अभी है वो कोई पूरा नहीं कर रहा, क्योंकि मसला ये है कि जैसे हम लोग कभी मैं दो तीन एग्जांपल आपको ये दे देता, तीन चार दे सकता हूँ। हम देखे मिसलन ग्लोव स्टोव देखे, हाई कास्ट स्टोव देखे, ब्राउन भी देखे, और कुछ बंदों ने फिर रबते भी किए और सलाह मशवरे भी किए, और जब हमने वो इनको चेक किया तो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी कि उसके अंदर कोई ऐसा क्या कहते हैं पॉइंट नहीं था। कुछ पॉइंट्स हैं थे जो बंदा कह सकता है कि आसानी कर सकता है, मगर आप जब लैसी, आप को एक मोटी एग्जांपल दे देता हूँ कि बंदा हाउस प्लेस देखें, कोपरे सबको पता है हाउस प्लेस है, आप वहां पे कोई बिल्डिंग हो उसको आप उठा के ना पो ले जाए, वो वालदेन के लिए कोई कोई आसानी तो नहीं ना होगी। और इस ये चीजें इस तरह इकट्ठा करना, एक जगह से लेके उधर चले जाना, उधर से लेके इधर चले जाना, ये करना वो करना, वो बड़ा मुश्किल क्या कहते हैं चीज हो जाती है। और जैसे ये अभी कहा गया है कि ये जो आज एक किस्म की क्या कहते हैं टेक्निकली हिस्ट्री है कि विंस्टर की नेशनल जो पार्टी है उसमें से 19 सीटों में से 5 ले जाके कहा है कि हमने अपनी पार्टी के खिलाफ या अगेंस्ट ये कहते हैं वोट दे दिए। मतलब आप देखिए कि 29% ने अपनी पार्टी चेयरमैन के अगेंस्ट दे दिए। पार्लियामेंट का जो वर्किंग इस वक्त एक्टिव चेयरमैन है उसकी जो पार्लियामेंट को चलाता है, जिसकी एक किस्म की कहां भी और पावर भी उतनी होती है जितनी प्राइम मिनिस्टर की होती है, वो अगेंस्ट चला गया है कि मैंने नहीं वोट इसके हक में देना। तो ये देखिए ना, मतलब कि एक किस्म की फ्रस्ट्रेशन अपनी पार्टियों में काफी है और काफी क्या कहते हैं मुसीबतें हैं कि उन चीजों को देखने की जरूरत है। और दूसरा ये भी है कि जैसे आपको पता है कि ये बेंजीन जो है हम सब ने पैक किया था कि समर के बाद ये 16 पे खड़ी रहेगी, 15-16 पे, मगर वो 18-19 पे पहुंची हुई है। तो देखिए ना कि कुछ ना कुछ तो हल करना पड़ेगा ना। आप देखिए सूरत, आप प्राइसेस देखें, वो भी वहां पे ही खड़ी हैं, वो भी कोई इतनी डाउन नहीं हो रही वहां
1: तो
3: पे खड़ी हैं।
1: अदनान जिस तरह बता रहे हैं, क्या शहरियों पर टैक्स या दीगर अखराजात में इजाफा जो है मुतवक्को है?
3: नहीं, टैक्स तो नहीं इनने बताना, वो तो मेरे ख्याल से वो नहीं आएगा टैक्स का, क्योंकि वो टेक्निकली नहीं, मगर ये बंदा स्पेक नहीं कर सकता कि टैक्स नीचे हो, टैक्स वहां पे ही रहेगा। जो टैक्स ने क्या कहते हैं हटाना था वो तो डिसाइड हो गया हुआ था, मगर वो 2028 से डिसाइड हुआ हुआ है, क्योंकि वो फिर ये जब नेशनल बजट बनेगा ना फैंस लॉ का, तो फिर उसके क्या कहते हैं उसके अंदर आएगा जो है कीमतों के बारे में जो सवाल आते हैं वो यही है कि जो स्वीडन का मॉडल है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। और फनी चीज ये है कि स्वीडन के अंदर जो मॉडल लाया गया हुआ है ना, वो रेड पार्टी यानी कि लाई वो पॉली पची लाई थी अपने बेले में जब वो लाए थे, तो वही सिस्टम यहाँ पे कोशिश की जा रही है। मगर उसका मसला ये है कि वो सिस्टम अभी अभी साल लग सकते हैं आने में, तो वो साल लोग एक साल तो नहीं ना इंतजार करना चाहते, लोग तो कुछ अब भी इस वक्त क्या कहते हैं देखना चाहते हैं। हम जहाँ पे मैं साहब बैठे हुए हैं में, यहाँ पे तो पहले एक क्या कहते हैं बजट आया उसका तो एक पहले एक बम था, अब दूसरा बम ये है कि ये जो इनको छूट मिलती है वो भी इनको नहीं मिलनी। तो अब अनस्पेक्टर है कि पैसे कहाँ से लाए जाएंगे और क्या किया जाएगा, और ये चीजें तो थोड़ा बहुत अंदाजा होता है क्योंकि हम खुद बैठे रहे हैं और हम टेबलों पर भी काफी आए हैं रिसेंटली, मगर वही होता है कि कुछ ना कुछ तो लॉन्ग सेक्टर पर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि मसला ये है कि जितनी देर तक क्या कहते हैं ये ईरान का यूक्रेन का मसला नहीं हल होगा उतनी देर तक ये प्रॉब्लम रहनी है, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है वो यूक्रेन की तरफ जाता है। अभी ये 2 दिन पहले खबर मेरे ख्याल से आई थी कि अब यूक्रेन फिर रोने लग पड़ा है कि उनके पास पैसा नहीं रहा, तो ये एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं मसला है।
1: आपने अदनान आपने बड़ी बात की है, शाह साहब की तरफ चलता हूँ। शाह साहब, ये कैमून के पैसे कहाँ और किन शोबों पर ज्यादा खर्च होंगे, और उसके अलावा क्या बजट पर गैर जरूरी अखराजात कम करने के लिए कोई अमली मंसूबा भी है शाह साहब?
2: ये जो बात छेड़ी है अदनान ने, ये बड़ी सियासी और बड़ी टेक्निकल बात है कि कम्यूनों ने जो पिछले चंद सालों में जो पैसा इकट्ठा किया था वो, और इनके पास जो ओस था वो स्टेट के पास चला जाता है और स्टेट जो है वो जमानत के तौर पे इस पैसे को रख लेते हैं। वो पैसा सारा का सारा इन्होंने उठा के यूक्रेन की वॉर और दूसरे वॉर जंगी इलाकों में इन्होंने घुसेर दिया और कुछ आपने डिफेंस पे लगा लिया थोड़ा बहुत। तो अब मसला ये है कि कम्यून स्टेट के पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो दे, स्टेट कहां से पैसा लाएगी।

0: चार नींबू मिल रहे हैं सिट्रोन, अगर आप उनमें से ये निकाल लेंगे तो वो आप देखेंगे कि इनको 1 या 2 करोड़ सस्ता होगा वो। तो ये नुकसान जो हैं ये आवाम से पूरे किए जाएंगे। ये जो गवर्नमेंट है, ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, ये बिल्कुल गुलामाना जहनियत की है, और ये चाहती है कि हम लोगों को दबा कर रखे। और दूसरी चीज, आपने इतनान की बात पे गौर नहीं किया कि वेस्ट आइन के अंदर और कोपेनहेगन के अंदर जो है वो, चलो कोपेनहेगन की तो बात एक अलग चीज है, वो बड़ी कम्यून है, लेकिन वेस्ट आइन के अंदर जितनी भी कम्यूने हैं इसके अंदर ज्यादातर नए मुंतखब काउंसलर्स हैं जिनके पास इतनी ज्यादा अफारिंग नहीं, इतनी ज्यादा तजर्बा नहीं, उनको पता ही नहीं कि बजट के अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या करना है क्या नहीं करना। सिर्फ सुन के तो हिसाब किताब नहीं लगाना, वो किसी चीज पे बहस नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं कि किस पोलियो से किस जगह से हम पैसा उठाकर कहाँ लगाना है। वो तो जैसे उनको पार्टी कहेगी, उन्होंने कहा जी हमने तो मुआदे किए हुए हैं, हम इस पे हाँ करेंगे, तो आपने भी हाँ करनी है। तो ज्यादातर इंटरेस्ट इस वक्त कोई नहीं है मेरा ख्याल में, कि अगर ये इसी तरह
1: शाह साहब,
0: रहा
1: लगता है कि आप
0: तो
1: पॉइंट स्कोरिंग की बात करेंगे, पार्टियां पॉइंट स्कोरिंग करती हैं। अदनान, आप बताएं कि स्कूल के बच्चों के लिए बजट में कोई खास रखा गया है, कोई चीज़ रखी गई है, कोई खास बजट रखा गया है?
2: नहीं सब जे जो मैं एक एक बात कह दूं कि ये बात जो साहब कह रहे करेक्ट है बहुत सारी चीजों का। मसाइल पता है इस वक्त दो चीजों की मसाइल भी हैं कि देखा जाए ना जिस तरह है क्या कहते हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए ना तो वेस्ट आइन में ना और कुर्मान आम के अंदर ना बहुत सारी क्या कहते हैं तब्दीलियां आई हुई हैं। बहुत सारे नए मेयर आए हुए हैं, नया क्या कहते हैं कैबिनेट्स आए हुए हैं, तो डेफिनेटली वो टाइम लगता है कि उनके एक्सपीरियंस से उस चीजों के अंदर रहने से, क्योंकि आप देखिए कोपेनहेगन में तब्दीली आई हुई है, क्लर्सहॉक्स में तब्दीली आई हुई है, ब्रॉनबी में भी एक किस्म का नया ही है, 1-2 साल वो वहां बैठी थी, एसएफ बैठे हुए हैं, बिलो में भी एबिसलो में भी क्या कहते हैं चेंज आया था, तो ये एक और एबिसलो में तो ऐसा चेंज है कि देखा जाए तो टेक्निकली तो अवाम जो है वो है रेड मगर बैठा एक ब्लू हुआ है, तो मतलब कि ये टेक्निकली बड़ी होता है। जो आपका सवाल है उसके अंदर मैं आपको एक मोटी सा एग्जांपल दे देता हूँ। हम एक यहाँ पे एमस्टोन के अंदर एक चीज बनी थी कुछ कुछ अर्सा पहले, उसका ये जो नया बंदे बैठे हुए हैं इनको मालूम ही नहीं है कि वो चीज स्कूल के अंदर सिस्टम है, वो सिस्टम स्कूल बड़ी मुश्किल से चला रहा है। अब ये जैसे बैठे हुए हैं सारे, इनको पता ही नहीं कि वो सिस्टम कैसा है, क्योंकि सियासी बंदे बहुत नए हैं और वैतनी में भी बहुत नए हैं, तो फिर वो थोड़ा होता है कि बंदे
1: अदनान
2: को
1: देखे
2: टाइम
1: ना,
2: लगता
1: ये
2: है कि
1: नए तो अपनी जगह, उसके लिए तो आगे देखना है कि जो जरूरियात हैं वो किस तरह पूरी करें। नए की तो जरूरियात पूरी होती रहती हैं, कोई भी मेयर बन जाए, कोई भी हो जाए। आप देखे ना, नौजवानों के लिए खेल, तालीम, रोजगार के हवाले से भी तो कुछ रखा जाता है ना। क्या इकदाम कर रहे हैं?
2: सब वो तो
1: अगर नौजवान आए हैं तो
2: निगोशिएशन,
1: उनके लिए नौजवान क्या कर रहे हैं मेयर?
2: ये क्वेश्चन तो अब कोई बंदा क्या कहते हैं मेरी बात सुन के शायद नाराज हो जाए गुस्सा कर जाए, मैं आपको एक मोटी एग्जांपल दे देता हूँ। ये जहाँ मैं और क्या कहते हैं हम साथ साथ बैठे हुए हैं, जिस दिन यहाँ पे इनने बजट वगैरह पेश करना था और सारी टीम को क्या कहते हैं बताना था कि हमने ये खेचलो बनाया और हम इस तरह जा रहे हैं, वहां का डिप्टी मेयर ने कह दिया था कि पता नहीं किस वजह से उसने माइजत कर ली हुई थी, और ये डेट कम से कम 6 महीना पहले पता थी। अब मुझे नहीं पता कि क्या वजह थी कि क्या नहीं थी, वहां पर डिप्टी मेयर नहीं था, और बाद में वही सोच पै गया था कि ये बंदा हर बार ऐसे करता है। तो मैंने फिर एक बंदे को मैंने उधर यही कहा कि देखिए अब वो बंदा ऐसे करता है तो ये तो फिर आपको खुद हाईलाइट करना चाहिए ना कि वो क्यों करता है, ये तो पार्टी को कहे ना किसी को कहे तो बंदे को पता चले ना, क्योंकि जब आप एक ओहदे पे बैठे हुए हैं, आप डिप्टी मेयर हैं, आपके पास मेयर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका एक लहरा सा रोल होता है क्योंकि आपने मेन रोल प्ले करना है। इवन ये मैं ये नहीं कह रहा कि वो शायद ना हो शायद टीम में शायद दूसरी टीम बनाई हो जिस तरह निगोशिएशन करना हो, मगर वो लहरा बात है, मगर उसका काम तो इतना है ना कि वहां पे हो उसको बता सके कि हमने ये क्यों ऐसे किया है, ये कैसे किया।

0: किया और इसकी क्या वजह है और इसके पीछे बैकग्राउंड क्यों है, हमने क्यों इतना 58 मीन माइनस क्या कहते हैं बचाने का प्लान बनाया हो, तो बंदे को इतना तो पता हो ना कि क्यों बना है और किस वजह से बना है और इस चीज में क्या है। मैं आपको ये भी बता दूं कि दो तीन चीजें यहाँ पे एम्सलोन में हैं जिस पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं, मुझे पता चला है एक रॉस्किले में भी करने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन है इस बार और मुझे पता है कि लोग इस बार बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। मैं न्यूट्रल वे से भी कह सकता हूँ, मगर मेरी जो परेशान है उस वजह से मुझे बड़े सवाल किए गए हैं और मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि मैं जवाब दे सकूं, मगर मसला ये है कि मुझे फ्रेंकली इस वक्त खुद समझ नहीं आ रही कि ये लैंड कैसे होगा, क्योंकि मैं एब्सोल्यूट की बात कर रहा हूँ, ट्रस्ट में मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है और जगह पे भी कुछ जगह पे ये लैंड करने बड़े मुश्किल है सारे, इतना ये इतना आसान नहीं है जितना बंदा कह सकता है, क्योंकि बात वही होती है कि जब जब आपने पैसे को 1-1 करोड़ को देख के इस बार आपने डिसाइड करना है, क्योंकि आपने ये भी देखना है कि कुछ चीजें जो है, मैं आपको बता दूं कि एक व्यूअर्स के लिए इंफॉर्मेशन मैं दे दूं कि मसला ये है कि ये जो 2027 का बजट है ना, इसके अंदर कुछ तब्दीली आई है कि कुछ जो पहले एक्यूम्स के अंदर ऑप्के होते थे ना, वो ऑप्के वो कमून के अंदर भी आ गए, वो कमून को दे दिए हैं और वो पैसे फॉलो नहीं हुए जो मुझे समझ आ रही है। तो आप ये भी एक मसाइल है कि आपको काम ज्यादा मिल गए हैं मगर सर आपको वो पैसे नहीं मिले, तो ये भी तो आप देखना है ना
1: काम शाह
0: कि ये
1: साहब
0: चीजें
1: ज़्यादा
0: कैसे
1: मिल
0: हैं।
1: गया तो पैसे नहीं मिले। तो शाह साहब ये मैं आगे दूसरे मिसाल की तरफ बढ़ता हूँ। क्या जो गैर मुल्की हैं या तारकीन वतन हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग हैं, नौजवान हैं, उनको जो है अभी उनको भी एक ही तरह के मुनासिब मौके मिलते हैं हर चीज़ में?
2: जी बिल्कुल, सबको मिलते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या वो आइन और अपनी लोकल जहां वो रह रहे हैं कम्यून, उनके जो कवानीन हैं उनको फॉलो करते हैं या नहीं करते। अभी इस दौरान ने बड़ी प्यारी बात की है, मैं उसको थोड़ा सा देखूंगा और बताऊंगा ताकि आपके व्यूअर्स को जो हमारा मसला है वो समझ आए। 70s 80s 90s के अंदर ये होता था, mid 90s तक ये होता था कि जो कम्युनिटी होती थी उसके अंदर जो होते थे ना क्रिस, जिसको हम हल्का कहते हैं, उस हल्के के अंदर जो होते थे मुख्तलिफ पार्टी थी, मतलब सोशल डेमोक्रेट है, रेडिकल है, वेंसा है, कंजर्वेटिव है, जो भी पार्टी होती थी वो अपने जो लोकल प्रॉब्लम होती थी उस पर बहस करते थे, उसके अंदर पार्लियामेंट के मेंबर्स या जो नामजद मेंबर्स होते थे या काउंसलर्स वगैरह वो वहां पे बैठते थे, फिर उसके ऊपर एक डिस्कस होती थी और देखा जाता था कि इलाके में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है, आवाज कहाँ जुड़ रही है। तो इस दफा जो अदनान बात कर रहा है, इस दफा लोगों को पता ही नहीं कि यहाँ के लोकल प्रॉब्लम क्या है और बजट में क्या पेश कर दिया गया और लोकल लोगों की प्रॉब्लम क्या है। अब महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि अगर ये पूरा महीना सितंबर का इसी तरह महंगाई रही तो अगले महीने में अक्टूबर में लोगों की चीखें निकल आएगी, लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे और ये जो टैक्सीज वगैरह का और ये दूसरा जो ड्राइविंग सिस्टम है, जितना भी डेनमार्क के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये भी कोलैप्स होकर आ जाएगा। आपको पता है कि इस वक्त ऑलरेडी जो आपकी एस्ट्रो है ट्रेन वगैरह है उसके अंदर ड्राइवर नहीं उनको मिल रहे, वो भी फ्रस्ट्रेशन में है सब लोग, क्योंकि वहां के जो उनको काम करना पड़ता है और जो उनको पे मिल रही है वो भी बहुत कम है। तो ये जो गवर्नमेंट है इसको इस चीजों पे सोचना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो इदनान ने जो पुट अप किया है, मसला वो यही है कि जो हमारी लोकल कम्युनिटी है क्या वो अपने अवाम की जो उसके अंदर रह रहे हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। अगर वो नहीं समझ रहे तो फिर इसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम जो पार्टीज हैं, हो सकता है कि डेंस फड़के पार्टी का फोरमैन आ जाए, इनका सॉयबेयर की पार्टी का फोरमैन आ जाए, कोई और आ जाए बॉमिस्टर, क्योंकि ये जो पुरानी पार्टीज हैं इनके पास जो ना तजर्बाकार लोग सामने आए हैं उनका अवाम से रब्ता नहीं। अगर वो अवाम से रब्ता रखेंगे तो ये चीजें आगे चल के
1: चलें शाह
2: ठीक
1: साहब, ये
2: होंगी।
1: तो साथ साथ चलता रहेगा। अब आते हैं अगली तरफ बढ़ते हैं। ये जो मसाइल سماجی مسائل ہوتے ہیں، شاہ صاحب آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ بھی پینشنسٹ ہیں، بزرگ ہیں، عدنان تو جوان ہے ابھی، یہ جب بزرگوں یا ان کے کم آمدنی والے جو لوگ ہیں یا خاندانوں کے لیے بجٹ میں کوئی سہولت رکھی گئی ہے یا سہولیات رکھی گئی ہیں؟
2: جی نہیں، بالکل میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے کوئی رکھی گئی ہے، بلکہ ان کو ایک جو ہے وہ گلاب جامن یا لالی پاپ ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ اگلے سال ہم یہ کریں گے۔ بھائی چیخیں ابھی نکل رہی ہیں، مہنگائی ابھی ہے، ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں اس وقت ہوا میں ہیں، لوگ میجورٹی فرمیں بند ہو رہی ہیں، آبس سے بڑھ رہی ہے، ٹیکس کیسے جائے گا؟ جب زیادہ لوگ کام کرتے ہیں تو کمیون کے اندر ٹیکس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، لوگ زیادہ امیر ہو جاتے ہیں، کمیون بھی جو ہے اس کے بجٹ میں بھی زیادہ پیسہ آ جاتا ہے۔ تو اب جب یہ ساری پرابلم ایک ساتھ زیادہ آ گئی ہم پہ، تو عوام جو ہے وہ تو پس کے رہ جائیں گے، اور کمیونیں جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ تو یہ بہتر یہی ہوتا کہ کمیونوں کو چاہیے تھا کہ جو ان کے علاقوں میں ایکسپرٹیز دے رہے ہیں یا ایکس سیاستدان جو پہلے تھے، ان کو بلا کر ایک ان کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے تھا، ان کے ساتھ ایک ڈیبیٹ کرنی چاہیے تھی کہ جو میجر پرابلمز ہیں اس کا حل کیسے کیا جائے۔ مثال کے طور پر جو بچوں والی فیملیز ہیں یا وہ جنہوں نے جو گاڑیاں یا ٹرانسپورٹ یا ٹرانسپورٹ میں یہ ٹرینز بھی آتی ہیں، سارا کچھ اس سے جو سارے ریلیٹڈ ہیں، اگر وہ کل کو بیکار ہو جاتے ہیں تو ان کا کیا حل ہوگا؟ کیا وہ یہ جو 15-20 ہزار کروڑ ان کو ٹیکس کاٹ کے تو ان کو تھوڑے سے رقم ملے گی، کیا اس میں وہ گزارا کر لیں گے؟ کیا وہ اپنے مکانوں کا کرایہ دے سکیں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ کمیونوں کے اندر رہتے ہوئے بھی اس وقت انہوں نے جو انمیلی بولیز ہیں ان کے کرائے جو ہیں ان کو بڑھایا ہے، کم نہیں کیا، اور یہ بھی کمیون کا فرض بنتا ہے کہ وہ انمیلی بولی سے بات کرے اور ان کو سمجھائے کہ بھائی آپ جو ہے یہ کرایہ دن بدن نہ بڑھائیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بجلی کے بل جو ہیں یہ پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ بہت زیادہ بڑے ہیں اور لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، تو یہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر تو مسئلہ بہت بڑا ہو جائے گا۔ جی راجہ صاحب،
1: آپ نے شاہ صاحب کی باتیں سنی کہ لوگوں کی جو ہیں وہ چیخیں نکل رہی ہیں، چیخیں تو ڈیفینیٹ نکلیں گی اور بہت ساری نکلیں گی۔ آپ دیکھیں عدنان، جب یہ بجٹ بنایا جاتا ہے تو کیا شہریوں کی شکایات یا تجاویز کو بجٹ میں، بجٹ کے عمل میں کس حد تک شامل کی جاتا ہے، جاتی ہیں یا جاتی ہیں؟
0: سب دیکھا جائے، اس سال میں ایک چیز کہوں گا کہ کیونکہ میں کافی سالوں سے اس چیز کو دیکھ بھی رہا ہوں، انالائز بھی کر رہا ہوں، اس سال وہ ساری پریشانیاں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان پہ غور سے اور عمل بھی کر رہے ہیں، مگر مسائل یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں نا کہ جب آپ نے بیٹھتے ہیں نا تو پھر آپ نے ہر مسائل کو دیکھنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے اور آپ نے ڈیپلی اس کے اندر چیز کو دیکھنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، اور اس بار مسئلہ یہ ہے کہ کمونیں جو ہیں نا وہ ہر طرف سے اپنا کوشش یہ کریں گی کہ لانگ سیکٹر بجٹ بنے، اور ایسا بجٹ بنے کہ بندہ 2829 میں نہ دوبارہ اس پرابلم میں نہ آئے۔ تو پرابلمس لے رہے ہیں، اور اسی لیے ہوتا ہے کہ جب بجٹ پیش ہو جاتا ہے نا تو آپ کے پاس تقریباً 2 ہفتے ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ جو اسکول ہوتے ہیں، عام انسان اپنی طرف سے بھی اس کو ایک ملتا ہے موقع کہ وہ ایک اپنا ای میل پہ بیچ سکتا ہے اپنی رائے، اور وہ رائے ساری کمونوں میں چلی جاتی ہیں اور وہ جاتی ہیں 2-3-4 نمبر تک، اور وہ چلی گئی ہوئی ہیں، اور آج ڈیڈ لائن ہے ایپسلون کی، کیا کہتے ہیں کمون کی، اور دوسرے بہت سارے ویسٹان کمونوں کی، جب وہ جائیں گی ڈیفینیٹلی ان کو پڑھیں گے، ان میں دیکھیں گے کہ کچھ آئی ڈی دیں گے لوگ، کچھ کمپنیاں دیں گی، سب دیں گے، اس کے بعد پہ وہ دیکھیں گے کہ کون سا سولوشن صحیح ہے، اس میں سے کچھ بہتر کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، کیا کر سکتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو غور بھی کرتے ہیں، ان کو دیکھتے بھی ہیں، اور سلام مشورہ بھی کرتے ہیں، اور آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ٹیبل پہ تو بلیرا بات ہے کہ جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو بلیرا چیز ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپس میں بات چیت ہوتی ہے، اور اس وقت مسئلہ یہی ہے کہ اس سال 2027 کے اندر یہ ہوا ہے کہ جب یہ نیا ریفارم ان ریجن کا بنایا تھا، جب 5 ریجن سے 4 ریجن بنے تھے، تو پھر ان نے کچھ جو آپ کے وہ تھے نا وہ کمونوں کے اندر لے گئے ہیں، تو اس لیے اس بات نے تھوڑی بہت کیا کہتے ہیں پھر وہ چیزیں بھی ان نے دیکھنی ہے اور سارا کچھ سسٹم دیکھنا ہے ان نے، तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला होपफुली बजट बनेंगे और अल्लाह करे कि अच्छे
1: बजट
0: बने,
1: बनेंगे, बनते रहेंगे।
0: बने।
1: तो अब आप दोनों से मेरा बराह रास्त सवाल है, आपको किस बजट में या इस बजट में कौन सी खूबी नजर आती है और कौन सी खामी नजर आती है, ये दोनों से मेरा सवाल है।
2: जी मैं तो ये कहूंगा कि मुझे तो इस बजट में जो मैंने मेरी नजरों से गुजरे हैं, जो मैंने तजिया नगारों से या अपना मैंने अखबारों में या आगे पीछे टीवी पे देखे हैं, अभी खुसूसी तौर पे जो बेस्ट टाइम का जहां मैं एल्बर्स रोड में रह रहा हूं, इसका अभी फुली ओपन नहीं हुआ। मसला ये है कि जब माइनस आप जा रहे हैं, जब आपके पास इतना पैसा ही नहीं, तो फिर आप कहाँ से पैसा लाएंगे? स्टेट के पास पैसा नहीं है, स्टेट जो है वो हमें ब्लफ कर रही है, वो कह रही है मेरे पास तो ओवर स्कूल है और मैं दे रही हूँ, लेकिन कहाँ है वो पैसा? वो पैसा क्यों नहीं दे रही जो इन्होंने कम्यूनों से वापस दिया था, जो कम्यूनों का जमा है वो दे ताकि लोगों पे इस बुरे वक्त में लोगों के काम आए। तो ये जो ब्लफिंग कर रही है इस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट और इससे अवाम। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो बहुत ही जरूरी है सियासत के अंदर, सियासत के अंदर ये होता है कि जो लोकल सियासतदान होते हैं वो अपनी गलियों का और अपनी वहां के रिहायशों की जो बजट है वो पहले ही पेश करते हैं। यानी कि अभी आपने अदनान से सवाल किया था, अदनान ने जवाब दिया है कि ये जो अभी जो फोर्स ने जाएंगी ये 27 के अंदर इसके ऊपर बहस होगी, ओवर 28 में जाके इस पे कुछ चीजों पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जो बजट अभी आया है, ये जो बजट अभी ये सामने पेश हुआ है, ये 25 के हैं, ये पिछले साल के हैं जो इनके इनके सामने आई हुई है कि भाई हमने यहाँ पे बिल्डिंग्स बनानी है, यहाँ पे हमने स्कूल को इतनी मदद देनी है, यहाँ से हमने इतनी चीजों को आगे बढ़ाना है, ये पुरानी बिल्डिंगों कैसे, सड़कें कैसे,
1: ये सारा कुछ जो है पिछले साल के। आपको ले आते हैं चूंकि आप अपोजिशन की तरफ से जो है वो अदनान है, वो हुकूमती जमात से उनका तल्लुक है, तो अगर शाह साहब आपको इस बजट में एक तब्दीली करने का इख्तियार मिले तो आप कौन सी तब्दीली करेंगे?
2: मैं सबसे पहले जो यहाँ के अवाम है जिनके पास ज्यादा से ज्यादा फैमिली जो है वो गुर्बत की से नीचे रह रही है, मैं सबसे पहले इस बजट में उनके लिए पैसा रखूंगा ताकि वो खुशहाली आए। खुशहाली सिर्फ इस वक्त हो सकती है जब आपकी जेब भरी हुई है तो आप जाते हैं, आप दुकानों से भी चीजें खरीदते हैं, खुराक खरीदते हैं, दवाइयां खरीदते हैं, तो वो पैसा जो है आप अपने कम्यून के अंदर खर्च करते हैं, तो उससे जो है वो सरमाया जो है उसका सर्कल जो है पिया उसका जो होता है वो सर्कल करने लगता है। मैं तो ये करूंगा कि जब तक अवाम के पास पैसा ना होगा, और उसको सबसे बड़ी मिसाल ये दूंगा, अदनान इस पे बिल्कुल बात कर सकता है कि यहाँ के इस वक्त जो लाए बोली है इनके हौसलाए इतने ज्यादा हैं कि आप टैक्स कम पे कर रहे हैं और हौसलाए आपके डबल हैं, तो इससे जो है अवाम ज्यादा पिसकी है, इसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा।
1: अदनान आपको कोई एक तब्दीली करने का अख्तियार मिले तो आप कौन सी तब्दीली करेंगे?
0: सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इनको दो मेन चीजें हैं जिन पे इनको फोकस देने की जरूरत है। ये है कि ये जो पूरा एजुकेशन का सिस्टम है ना, जिस तरह स्कूल से लेके स्कूल एजुकेशन को, इन दो चीजों पे इनको इतना कट ऑफ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये फ्यूचर है इनका और फ्यूचर में इनकी बहुत जरूरत है, तो इन पे गौर करना चाहिए। और दूसरी तरफ जो बच्चों को मसाइल हैं उनके लिए भी इनको थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। दूसरा इनको ये करना चाहिए कि बुजुर्गों पे इनको गौर करना चाहिए कि बुजुर्गों को हेल्प देने की जरूरत है क्योंकि बुजुर्ग बहुत सारे।
1: अगर आपको एक तब्दीली करने का अख्तियार मिले तो आप क्या करेंगे?
0: मैं सबसे पहले जिस चीज पे काम करना चाहता हूँ ना, और जो मेरी मैंने जो इलेक्शन में भी कहा था और सब लोगों को, वो ये है कि ये जो फ्यूचर में इन समझ रहा है इस पे काम करने की बड़ी जरूरत है बुजुर्गों की, क्योंकि बुजुर्ग जो है ना वो उनकी एक बहुत टफ जिंदगी गुजरी होती है और आगे जो बुजुर्ग हैं वो खाली घोड़े की तरफ नहीं है, वो हमारी नेशनैलिटी के भी आएंगे, तो इनको एक तरफ करने तो इस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप काम करेंगे तो आपको फायदा होना है क्योंकि लॉन्ग सेक्टर पे बुजुर्ग ज्यादा होने हैं और कोई ना कोई इनका क्या कहते हैं हल ढूंढना है, तो इस पे पिस्पाल से करना सबसे बड़ी स्ट्यूबर्ड बात है इस वक्त। और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने जो अभी तक मेरी इलम में आया वो यही आया कि 98 से 8 में से कम 75 कमूनों तक उसके अंदर किसी ना किसी जगह पे इनकी पिसपाल से जरूर है। ये मुझे समझ नहीं आई कि फवेलकनी में कौन बैठ के इस तरह की पिसपाल से कर, मगर अब उनका आइडिया है, हम
1: चले।
0: तो
1: अच्छा शाह साहब आपकी तरफ आते हैं, शाह साहब अगर इस मौजूदा बजट में आप हाँ करते हैं तो क्यों, अगर ना करते हैं तो क्यों? जी शाह साहब।
2: कि मैंने पहले ये कहा है कि मैं अग्री करता हूँ इजरान के साथ कि बूढ़े और बूढ़ों के साथ जो है ना वो फैमिलीज, जैसे कि अभी आपने देखा था फ्री ग्रोने के जो फॉर्मर है उन्होंने कोपनहेगन के प्लेटफॉर्म पे ये बात की कि 5,000 जो हैं वो बच्चे जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, इससे स्कूल भी अफेक्टेड होते हैं, इससे नॉर्मल लाइफ भी अफेक्ट होती है, हर एक चीज अफेक्ट होती है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो चीजें हैं फैमिली को देखा जाए, फैमिली को यहाँ पे आईन की एक बहुत बड़ी वायलेशन हो रही है राजा साहब, वो ये है कि अगर आपके घर में आप दो बंदे रह रहे हैं, आप कमा रहे हैं, बच्चों का बच्चों वाला घर है, बच्चे सब अंडर 18 है, अगर मियां कमा रहा है और बीवी जो है वो बीमारी पे चली गई है तो उसको कम पैसे मिलेंगे इस वजह से कि उसका मियां कमा रहा है, और अगर वो दोनों पेंशन पे चले जाते हैं तो फिर एक औरत को जो है वो पेंशन कम मिलेगी और मर्द को ज्यादा मिलेगी, और इस तरीके से ये अफेक्टेड होता है। हालांकि दोनों ने बराबर का टैक्स दिया है, बराबर के हकूक होने चाहिए, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसी वजह से गुर्बत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है डेनमार्क के अंदर। ये डेनमार्क वो था जिसका तोता पूरी दुनिया में बोलता था और यहाँ पे बहुत हाईलाइट किया जाता था।
1: देखे ना, सियासी पार्टियों के इख्तलाफात की वजह से बजट के आम आवामी मनसूबे जो है वो मुतासर होते हैं, ये अदनान से भी सवाल है।
2: जी मैं जरा इसके ऊपर ये सिर्फ यही कहूंगा क्योंकि हर कोई जो है वो नया आदमी है, जितने पुराने तजर्बाकार लोग थे वो तो हट गए या वो पीछे बैठे हुए, उनकी कौन सुनता है, ये यंगस्टर्स जो है ये सिर्फ अपने
1: इनको तो ज्यादा मिसाइल का पता होता है।
2: नहीं जी, यंगस्टर को कोई मिसाइल का नहीं पता होता है, ये जाते हैं और सो जाते हैं और यहाँ सुबह काम पे चले जाते हैं और अपने अपने मिसाइल को ये देखते हैं, इनको इनको कोई पता नहीं कि नेबर में क्या हो रहा है। बिल्कुल हकीकत है, अब इदनान जो है ये एक ऐसी स्टेज पे पहुंच रहा है कि ये खुद फैमिली वाला है और ये खुद यहाँ पैदा हुआ है, इसलिए इसको पता है कि इसकी फैमिली बैकग्राउंड में किस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है।
1: इसके जवाब आ गया शाह साहब। अदनान आप बताएं कि ये जो सियासी इख्तलाफात आपस में होते हैं ये अवामी मनसूबों को फिर नुकसान नहीं पहुंचता?
0: पहुंचता है, मगर सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये पहुंचता है कि अपने मसाइल जो होते हैं वो नहीं, मगर आप देखिए ना इस वक्त जिस तरह अब हम खाली लोकल नहीं कर रहे, हम पूरी सुल्तान की कर रहे हैं, हम देखे ना तो हमें ये देखना है कि किस चीज की इस वक्त जरूरत है और किस चीज की नहीं है। इस वक्त देखा जाए सबसे ज्यादा जो है ना अपने मसाइल साइड पे करके ये जरूरत है कि हम एक पेज पे आए और इन मसाइलों का सलूशन ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग अपना अपना देखेंगे ना तो हम इस मामले से बाहर नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि जो सलूशन जिस तरह शुरू से कहा गया है हम लोग बहुत रहते हैं, हमें कल तक तो मैं कह रही कि कल तक तो अंदाजा नहीं था हमें ये कैसे ये सूरत हाल जाएगी, मगर अब थोड़ा बहुत हमें क्या कहते हैं अंदाजा होने लग पड़ा है, क्योंकि हमने टाइम तो नहीं मिला क्योंकि हम यार मुसूरत दूसरी जगह पे, मगर आज शाम को ही हमें पता चल जाएगा थोड़ा बहुत जब हम इन चीजों को बैठ के देखेंगे अब, क्योंकि अब हमें सारा एनालिसिस हो गया कि क्या क्या हमारे पास है और क्या क्या नहीं है, तो वो फिर देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि हम जब पाकिस्तानी हों, तुर्की हों या डैनिश हों, इस वक्त हम बस ये देखें कि हमने किसके लिए कौन सी बेहतरी करनी है और कैसे हमने बेहतरी करनी है, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, आप हैं, हमारे वाले साहब, हमारे पेरेंट्स भी हैं, सब हैं, हमें सबके लिए देखना है कि कौन सी चीज बेहतर है, क्योंकि हमें सबको पता होता है। मैं खुद कहता हूँ कि जब मैं पीछे जाऊँ, एक साल पीछे जाऊँ टोकरी में मेरे खुद देखता हूँ, जिस जो मर्जी इंसान हो, जितना मर्जी हो जिसके पास, उसकी टोकरी में कम चीज होती है। तो इसलिए ये देखना चाहिए कि मसाइलों को हल करने की जरूरत है,
1: मसाइलों को हल करना चाहिए। अदनान मेरा आखिरी सवाल है, टाइम में बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा, आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, फिर शाह साहब का पैगाम लेते हैं।
0: मैं आवाम को यही दूंगा कि आप लोग जो फैसला करेंगे आप उस फैसले की कोशिश करना कि आप उसको सपोर्ट कर सकें। जिन
1: और
0: लोगों ने
1: कम्यून से
0: फैसला
1: क्या
0: इस वक्त
1: तवक्को
0: करने
1: रखते
0: में आप
1: हैं,
0: जी
1: और साथ साथ कम्यून से क्या तवक्को रखते हैं?
0: मैं खुद इसके अंदर हूं, मुझे पता है कि वो अपनी तरह से हर कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर चीज कर सकें और क्या कहते हैं कि लोगों को सूरत हाल दे सकें, क्योंकि उनको भी नजर आ रहा है कि आगे ना दी तो कौन सी क्या कहते हैं कौन सी तब्दीली होती है। और जैसे शुरू में हमने कहा था कि कभी नहीं हुआ कि एक पार्टी के अंदर 33% लोगों का अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट दे दें, तो उससे एक सिग्नल मिल गया, तो लेट्स होप के बेहतर ही होगा कुछ।
1: शाह साहब, आप अपने मौजूद मेहमान का शुक्रिया भी अदा करें, और आप मेहमान भी हैं मेज़बान भी हैं, क्या कहेंगे शाह साहब?
2: ये मैं अजान की अच्छी अच्छी बातें सुन रहा हूँ, बड़ा अच्छा बच्चा बात करता है और बहुत खुशी है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाल कर और हमें आवाम को जो है वो आगाही देते हैं। देखिए इस वक्त बहुत सारे कानून जो हैं वो लॉ फोर्सेस जो हैं वो हैंडलिंग हो रही है ऑलरेडी, और जो आने वाले सालों में हमारे ऊपर लागू होंगे। हमें बड़ी सोच समझ के इन पे बात करनी चाहिए और हमें इसके ऊपर कोई क्विक एक्शन लेना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि मैं जितने भी हमारे काउंसलर्स हैं, जितने भी हमारे फंक्शनल सियासतदान हैं जिनका मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर असर रसूख है या उनके मेंबर्स हैं, मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे इंग्लैंड और अमेरिका में होता है और दूसरे चार मुल्कों में कि काउंसिल डिबेट जो है काउंसिल डिबेट होती है कि जो आपके कम्यून्स होती है उसके अंदर महीने में एक दफा जो है कम से कम वो जो है मुख्तलिफ फ्री बिली लोगों को बुलाकर उनकी डिबेट होनी चाहिए ताकि वो आकर जो बजट आने वाले बजट है आने वाली जो चीजें हैं उनके ऊपर वो राय ले सके। और ये इसलिए जरूरी है कि इससे अवाम की जो प्रॉब्लम्स है उनकी भी आगाही होगी और आगे चल के जो है जो कम्यून्स हैं वो अपने बजट में काफी बचत कर सकती हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि एल्बरस्टोन के अंदर जो चंद साल पहले जो यहाँ पे चीजें होती थी वो अब उस नजर नहीं आ रही। और जब
0: है हमारे भाई सिकंदर सदीकी साहब जो इलेक्शन लड़े थे पिछले साल कोपेनहेगन के लोकल इलेक्शन, उनको आज टिक्चर से उनका केस चल रहा था कि वो सही तरीके से नहीं लड़े क्योंकि उनकी रास की मसला था, तो उनने अपना केस पिछले एक्सक्यूएल में भेजा हुआ था और उनने आज कोपेनहेगन कमून को कहा है कि आप इस मामले में सच्चे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको एक किस्म का डिस्क्वालिफिकेशन मिल गया
1: तो इसका
0: और वो
1: मतलब है
0: कोर्ट
1: कि
0: में
1: अशम आगा जो है उनकी सीट पर आ जाएंगे या दोबारा इलेक्शन होगा?
0: सब। ये तो एक वो तो उसकी सीट पे आ जाएंगे, मगर मसला ये है कि पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं चाहती कि दोबारा इलेक्शन हो, मगर जो डेनमार्क के एक्सपर्ट्स हैं और कुछ हैं उनने रफ्फर डाला हुआ है कि दोबारा इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं सही नहीं थी और बेस सही नहीं था। मगर उसका फायदा तो कोई नहीं है, क्योंकि एक सीट के पीछे आप इलेक्शन कराना चाहेंगे कि पूरा इलेक्शन कराना चाहेंगे, तो ये इसका कोई क्या कहते हैं नतीजा नहीं है। तो यही बनेगा आखिर में, यही मेरे ख्याल से होगा कि हाशम जो है उसको सीट मिल जाएगी और फिर क्या कहते हैं वो कई कोने पच्ची को अस्पिछया करेगा जो अगले 3 साल होंगे ना नेक्स्ट इलेक्शन तक, यही इसका नतीजा आ रहा है। और जो सिकंदर भाई हैं वो फिर अब पार्टी के अंदर अपनी को बिल्डअप करेंगे और डेफिनेटली पार्लियामेंट के इलेक्शन, रीजन के इलेक्शन, कमून के इलेक्शन, उसकी तैयारी और उसकी प्रिपरेशन में करेंगे और यही कर सकते हैं वो, और आशम और अपनी पार्टी को सपोर्ट कर
1: इसका
0: सकते
1: मतलब
0: हैं
1: उनके पास
0: जब
1: खुला टाइम होगा, आने वाले इलेक्शन को फोकस करेंगे।
0: मेरे ख्याल से तो यही करेंगे और इस चीज को क्या कहते हैं देखेंगे। बाकी अपनी उनकी अपनी राय है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते, ये तो अब उनकी लीगलिटी और वो सोचेंगे, मगर ये खबर तो यही है कि उनने अपनी फैसला यही किया कि वो कोर्ट में नहीं जाना चाहते क्योंकि वो बहुत बहुत सारा टाइम लगेगा, और हो सकता है वो अगले इलेक्शन तक क्या कहते हैं फैसला ना आए, तो
1: तो फिर ये तो
0: फिर उसका
1: फ्रीक
0: कोई फायदा
1: रोने
0: तो
1: को, ये ठीक है, ये अखबारी अखबारात में या कानूनी पेचीदगियाँ जो वो तो साथ साथ चलती रहती हैं, चलती भी रहेंगी आने वाले वक्तों में भी, लेकिन अगर इनकी
0: नहीं।
1: सीट ज़ाया नहीं हुई तो फ्रीक रोने के पास एक सीट जो है वो अभी भी है, स्टिल है।
0: जी, वो तो है, वो तो है, मगर वो ये है ना कि देखा जाए तो इसके पहलू से ये भी तो है ना कि लोग ये भी तो कह रहे हैं ना कि इसको अब जो इसको 7-8 महीने पे मिली है वो भी इसको वापस करनी चाहिए, क्योंकि उसका ये हकदार नहीं था, तो काफी क्या कहते हैं
1: नहीं,
0: डिबेट
1: लेकिन अगर फिर
0: तो
1: ये
0: चलेगी।
1: देखा जाए, ये तो मेरे ख्याल एक लाजैनी सी बात है, एक बंदा इजलास अटेंड कर रहा है तो जब आप मजदूरी अपनी पूरी करते हैं तो आपको मजदूर का आपके घर करेगा तो आप पूरी उसको मजदूरी देते हैं, ये नहीं कहते कि वो जो
0: हाँ
1: आया
0: वो
1: था
0: तो है,
1: कैसे आया
0: वो
1: था
0: तो है,
1: क्यों आया
0: मगर
1: था।
0: वो देखिए ना राजा साहब, वो पितावही में भी आ रहा है ना, तो वो बहुत कुछ आ रहा है, तो अभी तो क्या कहते हैं देखा
1: अच्छा,
0: जाए
1: इसका मतलब
0: तो
1: ये
0: जो
1: कानूनी जंग खत्म नहीं होगी?
0: कानूनी जंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर पार्टी ने ही फैसला किया है कि अब इसको, अब जब इसने फैसला कर
1: डिसीट कर
0: लिया
1: दिया जाएगा।
0: कि हाँ कि ये कोर्ट में नहीं जा रहा, तो हम इस केस को अभी तो खत्म करें और
1: ठीक,
0: क्या कहते हैं आगे आगे बड़े जरूरी काम है उन पर फोकस करें, इसकी जरूरत तो नहीं ना कि अब
1: जरूरत नहीं है।
0: ये इस
1: चलें,
0: बात
1: ये
0: पे
1: तो बड़ा
0: लड़ते
1: अच्छा
0: रहेंगे
1: किया
0: कुछ
1: आपने
0: दिन।
1: बता दिया अदनान। बाकी बजट की बात है, आप ही कमोर को बजट को देख रहे हैं, आप भी काफी चीजों का हिस्सा रहते हैं, देखते रहते हैं, पता भी चलता रहता है। कोपनहेगन कम्यून का बजट भी जो है तो उसको भी थोड़ी सी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में आपके पास खबर है तो शेयर करें, क्या मिलने जा रहा है जो है ना लोगों को, आम शहरियों को क्या मिलने जा रहा है, कि यही नहीं है जी हमारा
0: वैसा
1: बजट नहीं पूरा होता,
0: वो तो
1: अब कहाँ
0: देखा
1: से
0: जाए ना,
1: इनकम आएगी।
0: वो तो अपने अपने कमून के अंदर जो मान गए हैं वो ही करते हैं, अभी तक तो कोपेनहेगन कमून ने क्या कहते हैं अपना अपना क्या कहते हैं बजट की फुली कर ली है, और ये सितंबर के एंड के और फर्स्ट वीक जो अक्टूबर की आएगी उसमें वो अपनी अप्रूवल भी करा लेंगे। बाकी मेरे ख्याल से दूसरे कुछ कमूनों के भी बनते जा रहे हैं, उन्होंने भी अपना बना लिया है, एब्सलो ने भी नेगोशिएशन चल रही है, तो कमिंग डेज में पता चलेगा। कल इनकी जो मीटिंग होती है मंथली, वो मीटिंग भी हुई थी, वहां पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने डेमोन्स्ट्रेशन भी किए हैं, तो ये चीजें क्या कहते हैं चलती रहेंगी। और इसके साथ साथ नेशनल बजट भी जो वो भी शुरू हुआ हुआ है, तो फिर काफी चीजें क्या कहते हैं चल रही हैं इस वक्त, और कमिंग डेज में पता चलेगा क्या बेहतर हुआ क्या नहीं बेहतर हुआ। नहीं राजा साहब, मेरे पास उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, यही मुझे पता है कि नमस्ते इंडिया उन्होंने 6 सितंबर वाले दिन अपना प्रोग्राम किया हाउस प्लेस पे टाउन हॉल के सामने, और उसके अंदर इंडियन एम्बेसी उनके साथ थी, और उसमें उन्होंने क्या कहते हैं प्रॉपर्टी अपना पूरा कल्चर बचाने की कोशिश की है, और क्या कहते हैं देखा जाए तो ये उनका क्या कहते हैं अपना तरीका था और अपना वेरिया था। होपफुली हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी भी क्या कहते हैं इससे कुछ सीखे और इस तरह के कुछ इवेंट कराने की कोशिश करे कि पाकिस्तान को भी क्या कहते हैं इस प्रेजेंट किया जाए, पाकिस्तान के बारे में भी शो किया जाए। कोशिश तो की गई थी मगर वो इतनी कोऑपरेटिंग स्टाइल से नहीं था, अनफॉर्चुनेटली हमारे एम्बेसडर को ज्यादा क्या कहते हैं उस वक्त भी फोर्सेस एक्शन का ज्यादा शौक था, ये नहीं था पता कि यहाँ पे पाकिस्तानियों को जितना प्रेजेंट किया जाएगा और जितना पाकिस्तान को पेश करेंगे उस नतीजे से ही क्या कहते हैं फायदा होगा। और लेट्स होप के फ्यूचर में भी जो अम्बेसडर पाकिस्तान से आए वो इस बात फोकस करे कि हम भी कोई इस तरह का इन्वेंट कर सकें जिसमें अम्बेसी थोड़ा बहुत स्पॉन्सर करे कि पाकिस्तान की ये क्या कहते हैं व्यूअर और वेयर जो है वो बेहतर किया जाए।
1: अदनान, बात आपकी बात में वजन है, लेकिन जो हम इवेंट्स वगैरह कराते हैं, फेस्टिवल वगैरह कराते हैं, बेसिकली ये फंड रेजिंग की तरफ जो है वो चीज़ें चल पड़ती हैं, वो मकासद जो होते हैं कि वो सारे फोत हो जाते हैं। अगर ये फंड रेजिंग में स्टाल ही लगाने हैं तो अस्पतालों को लाकर जो है वो व्यूअर्स को भी बुलाना है, लोगों को भी बुलाना है, पार्किंग के भी मसाइल होंगे, फिर दिन का मकसद तो खत्म हो जाता है।
0: नहीं राजा साहब, देखें जिस तरह से इनने टाउन हॉल पे की है ना, उस तरह से देखा जाए ना तो आप देखें कि पिछले करीबन 10 सालों में कितने इंडियन आ गए हैं, और जब इंडियन कम्युनिटी एक क्या कहते हैं उनकी तादाद ज्यादा हो गई है तो उन्होंने फिर सोचा कि हम अपने कल्चर को भी किसी तरह की कहते हैं रेस्पिरेंट करें। इंशाल्लाह कोशिश की गई थी इस साल पाकिस्तानी एम्बेसी से भी, मगर मुझे नहीं पता कि उसमें क्या क्या इन इंफॉर्मेशन दी है फॉरन मिनिस्ट्री को पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जितना ज्यादा ये पाकिस्तानी अपने कल्चर को रेस्पिरेंट करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा ही फायदा होगा। जैसा आपको मालूम होगा कि इस वक्त पाकिस्तानियों को वीजा लेने की बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि अभी तक हम कैटेगरी 5 के अंदर ही हैं और कैटेगरी 5 के अंदर से बाहर नहीं निकले, तो इसके लिए हमने काम करना है। तो
1: यहाँ जो फंडिंग्स होती हैं, तंजीमात होती हैं, या ये डेमोक्रेट मुल्क है, यहाँ से तो हकूक के लिए लोग बाहर निकलते हैं, आप भी जाते रहते हैं, हम भी देखते रहते हैं कि लोग जाते हैं पार्लियामेंट के सामने भी अपने हक मांगते हैं, टाउन हॉल के सामने भी जाते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। आप मुझे बताएं कि आप ज़्यादा चूँकि इन चीज़ों में एक्टिव है, पिछले कितने अरसे से आपको अगर कोई याद हो, कोई एक आध मिसाल हो कि गैर मुल्की अपने हकूक के लिए बाहर निकले हैं?
0: यार सब देखें, गैर मुल्की निकलते तो है ना, अब देखें परसों चौथे नहीं 2-3 दिन पहले, जैसे ही ये मैंने आपके प्लेटफॉर्म से कहा था कि 5 सितंबर को एक एंटी इस्लामिक डेमोन्स्ट्रेशन बहुत बड़ा हुआ है, इतना बड़ा तो नहीं हुआ मगर उनने पूरी पॉपुलरशिप से करने की कोशिश की है। अल्लाह का शुक्र ये है कि उसके अंदर कुछ टेररिस्ट पार्टियां हैं जिन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया है, क्योंकि वो नाजमिज़्म था और इस तरह की चीज़ें थी। पाकिस्तानी बाहर निकलते हैं अपने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी निकलते हैं, मगर इस वक्त मसाइल ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया मसाइल इतने ज़्यादा बन चुके हुए हैं कि जब एक एक बात को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए मगर इंसान को सोच समझ के स्टेटमेंट देनी चाहिए। एक प्रोविंस का स्टेटमेंट देखे और वो डिवाइड करना जो है ना वो उस वक्त ख़त्म होगा इधर भी और पाकिस्तान में भी, जब सब एक टेबल पे बैठेंगे और फेयरनेस एक मुल्क में आएगा। जितनी देर तक ये चीज़ें नहीं ना होंगी उतनी देर तक हमें मसाइल हमारे मुल्क में भी रहेंगे और यहाँ पे भी रहेंगे।
1: अदनान देखें ना, मिसाल के तौर पर ये हम मिसाल दे रहे हैं, किसी की बात नहीं कर रहे। अगर किसी इवेंट में आइसक्रीमें जो 80,000 की 90,000 की बिक जाएं, और दूसरी तरफ आपने ये कहा जी कि ये जो अपना कैटेगरी जो है 5 वाला जो है या कौन सी कैटेगरी वाला मामला है, वीज़ों का मामला है, उस मामले में अगर लोग सब मिलजुल कर इसके लिए आप जैसे लोग जो हैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें कि देखें जी ये जमहूरी मुल्क है, आपको हकूक अपने जमहूरी तरीके से मिलेंगे, घर में बैठ कर या शगल शगल करके मेला करके पाकिस्तानी सियासत करके यहाँ डेनमार्क में रहते हुए डेनिश पासपोर्ट जेब में डालते हुए हमें सियासत करते हुए बहुत वक्त सोचना चाहिए। लेकिन डेफिनेट जो बंदे आए अपना प्यारा वतन तो हर किसी को प्यारा होता है, मोहब्बत एक जैसी सबको होती है, इसमें कोई किसी को ये ना कहे मुझे ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत है या दूसरे को ज़्यादा मोहब्बत, सबको मोहब्बत होती है। लेकिन अब जो चौथी जनरेशन जा रही है इसकी भी मोहब्बत भी इसके मुल्क के साथ है।
0: सब देखें कि दो जगह पे देखें, आपने जो कैटेगरी 5 की मिसाइल दी है ना, मुझे पता है कि इस वक्त बड़ी क्या कहते हैं लोगों को, आज मेरी एक जगह एक बात हुई तो उसने भी यही कहा, कहते देख हमने अपने फुट ये जिसको हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले के डिस्क्वालिफिकेशन में, कहते हमने फुट वापस बैक कर लिया। मैंने कहा देख वो कुछ मसाइल की वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट की वजह से, मैंने कहा मसला पता है क्या होता है, मसला ये होता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ना वो बेसिकली फ्रंट पेज से उनने चीजें देखी हूँ, उनने अंदर से ना देखा हो कि क्या है। और मैंने कहा मुझे तो नहीं ना पता कि यहाँ की जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वो बंदे के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान भेजती है, या वो भेजती भी है क्या नहीं, उनके अपने रेस्पिडेंट आते हैं तो ये यहाँ की जो नई जनरेशन है उनको पता है कि मसाइल हैं यहाँ पे, यहाँ की कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और कौन सी चीजें हैं, आज एक जैसे ही आपको मालूम होगा कि ये जो आजकल ज्यादा हेलसिंग मस्जिद के बारे में बात चल चल चल रही थी, आज फिर ये सिकंदर भाई की बात चल गई, फिर कुछ और बातें चलती हैं, तो ये मिसाइलों का सबको पता होता है, बस ये होता है कि मिल के बात करने की जरूरत होती है। और आपने किसी निकलने तो फिर आपको तौर तो तरीके से निकलना पड़ता है।
1: ज़ाहिर है यहाँ का कानून कायदा जो होता है, जो उसको लेकर चलना होता है, मेरी पसंद या दूसरे की पसंद नापसंद तो नहीं हो सकती। यहाँ तो जमहूरी तरीका है, जितने लोग जो आएंगे वोट डालेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, जितने लोग जो है वो जेन्युइन डेमोन्स्ट्रेशन पर आएंगे उतना ज़्यादा उनकी बात सुनी जाएगी।
0: सही है, ये आपकी बात सही है। आप देखें ना, मेरा साहब कोई गुस्सा करे या ना करे, मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको 1 साल पहले कहा था कि इलेक्शन भी बहुत ज्यादा इस्लाम और मुसलमान पे आएगा, और आस्ता आस्ता आप चीजें देखना कि कुछ चीजें ठप होंगी। आपके सामने है कि कुछ चीजें तो इलेक्शन भी बड़ा ठप आया था, आपने हेलसिंग में भी देख लिया क्या हो गया, और चीजों में भी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये 5 सितंबर को जो डेमोस्ट्रेशन हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि डेनमार्क के अंदर दो बिग पार्टियां विंस्टा और कंजर्वेटिव ने उस चीज को कंडेम किया है, मगर उस पे हमको भी फ्रंट पेज पे आना चाहिए। कुछ लोग हमारे आए हैं, उन्होंने लिखा भी है और उसके खिलाफ भी लिखा है, और कुछ स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है। जैसे मैंने फेसबुक पे लिखा था, आज एक बंदे ने बड़ा अच्छा जवाब मुझे दिया हेलसी के मामले पे, कहता है बात तो तुमने सही की है, मसला ये है कि ये तो कोर्ट में जाएगा। मैंने कहा ये तो डेफिनेटली कोर्ट में जाएगा, क्योंकि आप एक परमिशन लेके कह रहे हैं। मैंने कहा कि ये कह रहे थे कि कल्चर हाउस हम बना रहे हैं, मैंने कहा आपने इजाजत दे देनी थी, इन्हें कल्चर हाउस बना लेना था, बस फर्क ये रहना था कि इन्हें कल्चर हाउस बना लेना था, मगर जिस जगह से आप बैंड कर रहे थे वो फिर प्रॉब्लम तो उस वक्त आनी थी। अब इन्हें आपसे सच बोला, आपने इनसे ज्यादती की है, तो बात इन्हें मस्जिद कह दिए तो नहीं बनाना, मसला कोई है नहीं है। जिसके साथ मसला था वो एक स्पार है उधर, कुछ स्टोर है, उसने मसला डाला हुआ था, वो भी उसकी भी आज सच का नहीं निकला ये कि उसकी पार्किंग के अंदर 4 से 5 ज्यादा गाड़ियां खड़ी होती एक टाइम पे। मुझे तो पता ही नहीं कि पे उसको मुसीबत क्या थी, और उसने इतना बड़ा क्या कहते हैं इस तरह की हरकत क्यों की है, ये तो किसी को समझ नहीं आ रही।
1: अदनान देखे ना, किसी की पार्किंग में गाड़ी करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि ये इतनी हर बात पे दाव लगा के जो है वो कानून को बाईपास करके आगे बढ़ा जाए, ये भी तो कोई तरीका नहीं है। खुद भी तो कोई बंदे को एटिकेट्स होने चाहिए।
0: देखिए राजा साहब, बंदा देखें कुछ 1 में से 20 होते हैं जो जो होते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अब उनका मुंह रहता हूँ यहाँ पे, एक मैं उसका टेक्निकली मैं बताता हूँ उसका मिसाइल का था। उसकी एक मसला था कि 72% वो क्या कहते हैं गैर मुल्कियों पे जा रहे थे, और 38% जा रहे थे गोरों पे। मगर जब हमने देखा ना कि दूसरी जगह जहाँ पे वो मिसाल के लिए प्रॉब्लम के लिए जहाँ पे वो जा रहे हैं वहां पे हमारे पास जगह नहीं उसके लिए, तो फिर जब हमने एनालाइज किया ना तो वो यही कह रहा था, देखिए कि हम गैर मुल्कियों का केस बहुत जल्दी ले लेते हैं और गोरों का केस हम इतनी जल्दी नहीं लेते। तो मैंने कहा यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गैर मुल्की ने सर किया भी ना कुछ हो तो आप केस उठा लेते हो, आप देखते नहीं हो, तो फिर आपके खर्चे फालतू तो हो जाते हैं। मैंने कहा ये मतलब नहीं कि एक गैर मुल्की ने चपेड़ मार दिया या कुछ कर दिया तो 20 चपेड़ मार देंगे। मैंने कहा सर सोच समझ के आप देखा करें कि सामने क्या हो रहा है।
1: एक बंदे की गलती को एक बंदा ही काउंट किया जाए, सबको काउंट ना किया। अदनान आपने देखा डेफिनेट आप बच्चों को सुबह देखते हैं, मैं भी कभी कभी ये देखता हूँ, सर्वे भी करता हूँ, स्कूल के बच्चे पे जाते हैं, उसके बाद जो है वो वालदैन छोड़ने भी आते हैं, उसके बाद फुटबॉल पे भी लोग जाते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में जाते हैं, कॉलेज में भी जो बच्चे जाते हैं, तो आप सुबह देखें कि किस तरह जो है वो ज़ेबरा क्रॉसिंग पे लाइनें लगी होती हैं, किस तरह साइकिलों की लाइनें लगी होती हैं, और कितने बच्चे कितनी तादाद में कॉलेज के बाहर खड़े हों तो बंदा होता है यार इतने लोग आते हैं, स्कूलों के बाहर खड़े होकर देखें तो बंदा कहता है इतने लोग आते हैं, बाने में जाकर देखें तो बंदा होता है यार इतने बच्चे छोटे आते हैं। तो ये चीज़ें सबको पता होनी चाहिए ना कि जनरेशन तब्दील हो रही है, ये बच्चे क्या सीखें, ये यही कुछ सीखेंगे जो इनका कानून कहता है इनको सिखाता है।
0: जी, ये देखे ना ये डिसिप्लिन है, बहुत बड़ा डिसिप्लिन है। मैं आपको एक बात बताऊं, फर्स्ट डे था स्कूल का, मैं अपनी कमू में गया और मैं बच्चों बच्चों को छोड़ने गया, मैं उधर बोर्ड का मेंबर भी था, मेरी जिम्मेदारी भी थी। एक ने गाड़ी गलत खिला दी, कहती है मेरे पास कोई जगह नहीं है। मैंने कहा मतलब तेरे पास जगह नहीं है? तो कहती है टाइम नहीं है। मैंने कहा मुझे एक बात बता, तो मैं नहीं तो पता क्या फर्स्ट डे है? कहती है मुझे पता था। तो मैंने कहा फिर तुम 10 मिनट पहले क्यों नहीं है? ये मतलब तो ना कि तुम 10 मिनट पहले नहीं आ सकती तो तुम पूरी सड़क ब्लॉक कर दो। मैंने कहा 10 मिनट पहले आ जाती तुम्हें जगह मिल जानी थी, मगर तुम 10 मिनट लेट आई हो तो अब तुम, ये मतलब तो नहीं ना कि तुम पूरी सड़क बंद कर दो। कहती है नहीं मुझसे गलती होगी। मैंने कहा गलती होगी है, मगर अगली बार सोचो, क्योंकि ये जो चीज तुम कह रही हो ये तुम्हारा बच्चा देख के भी ये फॉलो करेगा।
1: देखें लोगों को जो राइट्स हैं वो राइट्स हैं, नई नई दुकानें खुलती हैं, सोशल मीडिया पे बड़ी एडवर्टाइजमेंट होती है, लोगों की लाइनें लगी होती हैं। मेरे नज़दीक ही एक मैं देख रहा था एक चीज़ खुली है बर्गर किंग टाइप इस तरह की बेकसार चीज़ें जो हैं, वो खुद जो है वो सोशल मीडिया का खिलाड़ी है, तो तकरीबन फरलांग डेढ़ डेढ़ फरलांग लाइनें लगी होती हैं। आप मुझे बताएं कि पहले भी उस एरिए में पार्किंग नहीं है तो जो लोग गाड़ियों पे आते हैं वो गाड़ियां कहाँ पार्क करेंगे, जो बिल्डिंगों में रहते हैं वो कहाँ पार्क करेंगे? कुछ पूछने देखने वाला है, लेकिन नहीं जी टैक्स आएगा, इनकम होगी टैक्स आएगा।
0: जैसा सब देखिए इन चीजों पे ना सारा काम किया जा रहा है और इंशाल्लाह ताला लोगों को भी पता है, क्योंकि ये मसाइल है, यही वन ऑफ द मसाइल कोपेनहेगन में काफी टाइम लगा है और मैंने उनका बजट नहीं पढ़ा, मगर उनने भी बड़ी बहस की है कि इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाए और इंशाल्लाह ताला इन चीजों पर काम किया जाए।
1: इतना बड़ा बजट है कि अपनी वो फिक्र ही नहीं पड़ी जाती।
0: नहीं नहीं वही है ना सर।
1: चलें अदनान, आप चूंकि इसलिए आपसे मल्टी किस्म के सवाल करते हैं क्योंकि आप मुख्तलिफ जगहों पे जाते आते रहते हैं, बातें भी करते हैं, खुद उसमें शामिल भी होते हैं। अदनान काफी टाइम हो गया, कम्यून के इलेक्शन हो गए हैं, लेकिन अभी तक हम जो है वो इधर से उधर बाल, उधर से उधर बाल, कभी इधर कभी उधर, कभी इस तरह की बातें चल रही हैं, कोई ठोस चीज़ बाहर नहीं आ रही, कोई ठोक पॉलिसियां बाहर नहीं आ रही कि ताकि ये काम करें तो अगली दफा इन्होंने वोट नहीं लेने दोबारा।
0: सब वोट सब ने लेने होते हैं, मगर मसला ये होता है कि जो पहला साल होता है ना वो बड़ा टफ होता है, क्योंकि काफी चीजें जो होती हैं वो सीखनी होती हैं, टेक ओवर करनी होती है। आप इंशाल्लाह ताला ये जब बजट बन जाएंगे उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ तब्दीली आएगी और कुछ चीजों में भी आएगी। रीजन का मैं ये कह सकता हूँ कि रीजन का जो मसला रहा है वो ये रहा है कि पूरा जो शेलन है ना उसको एक रीजन में बनाना था, तो वो भी क्या कहते हैं टाइम टेम टिल था, और कुछ रीजन के जो काम थे वो कमूनों में आ गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये नेक्स्ट कपल ऑफ वीकेंड्स बजट के बाद आपको नजर भी आना लगेगा कि कुछ चीजें तब्दील हो रही हैं और कुछ चीजें नहीं आ रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला काफी चीजों की सूरत नजर निकल आएगी कमिंग वीक और कमिंग मंथ्स में।
1: आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। देखिए ना आज इस वक्त जो है 9:23 हुआ चाहते हैं, जो लोग इस वक्त लाइव सुन रहे हैं उन्हें तो सर चीज़ का पता है, गाड़ियों में या किसी और जगह पे, घरों पे या मुख्तलिफ मकामात पर या किसी भी हिस्से शहर के हिस्से में सुन रहे हैं उन्हें तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जो लोग आगे सीना गजर कुछ सुनाएगा किसी को तो वो सारी आपकी बातों को जो असल मकसद है वो तब्दील कर देते हैं।
0: बस सब मेरा काम है लोगों को इंफॉर्मेशन देना और मेरा काम है कि लोगों के लिए बेहतरी करना, ये मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाया और यही मैं अपने नक्श कदम पर लेके चलूंगा, और अल्लाह की बस मेरी दुआ ये है कि मेरे बच्चे जो हैं वो भी इस नए काम में ही गए और आगे उनको अल्लाह ताला अपनी जिंदगी में कामयाबी दे। मेरे लिए तो यही है कि मैं जितना हो सकता मैं करता हूँ, अभी आपकी अभी थोड़ी देर बाद मेरा बच्चा जो है उसको दूसरे कमरे में मैच देख रहा है, उसको थोड़ी बातें करूंगा, फिर उसको वो सो जाएगा, उसके बाद फिर मैं थोड़ी बहुत अपना क्या कहता है एक आधा घंटा ऐसे पढ़ता हूँ, कुछ चीजें देखता हूँ कि कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं ना जो मुझे नेक्स्ट डे, तो इस तरह बंदे का होता है। जैसे आपने शुरू में कहा था कि मेरा आधा है नेक्स्ट इलेक्शन लड़ने का, तो वो तो इंसान प्रिपरेशन रखेगा तो वो लड़ सकते हैं ना, फिर वरना तो अंधा पीछे हो
1: एक
0: जाता
1: दिन
0: है।
1: में जो 3 महीने के अंदर आ जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, उन्हें पता ही नहीं होता हम किस मकसद के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो अभी से इरादा करें, उन्होंने 3-4 साल मेहनत करनी है, लोगों से मिलना है, बताना, लोगों को समझ आएगी कि ये लड़का लड़की जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ये इनकी तबीयत कैसी है, ये क्या करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन तरीका आपने अपनाया, पहले भी आप एक्टिव थे, अभी आपने शुरू से ऐलान कर दिया।
0: राजा साहब अभी तक तो मेरा यही प्लान है कि मैं नेक्स्ट इलेक्शन लड़ूंगा, बाकी अल्लाह ताला की जो नसीब में होगा वही होना है, जो इंसान के नसीब में लिखा होगा वही होना है। नसीब और रिस्क जो है वो उसके हाथ में है, और ये बंदा नहीं कुछ कर सकता इसके अंदर।
1: अदनान आपका बहुत शुक्रिया। अदनान मैं समझता हूँ जितनी मुझे समझ है, जितना तजुर्बा है, जितना हम लोगों से पूछते हैं, आते हैं, बात करते हैं, अदनान देखें कितना प्यारा मुल्क है कि आपको हर चीज़ जमहूरी तरीके से मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हर अच्छी चीज़ हमें मिलती है। कहीं वो होता है छोटा मोटा, ज़ाहिर है इतने बड़े लोगों में कुछ ना कुछ तो हो जाता है, घर में जो घर में अफराद रहते हैं उनमें भी तो छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। एक मुल्क चलाना, एक मुल्क में रहना, अस्पतालों की सहूलियात, बाकी ट्रांसपोर्ट की सहूलियात, बसें, ट्रेनें, क्या क्या मेरा टिकट ज़्यादा है या आपका थोड़ा है, सबके टिकट बराबर है, सहूलियात जो है वो डिफरेंट होती हैं।
0: नहीं दादा साहब यही है, और अल्लाह ताला के कहते हैं सब कुछ है, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए।
1: बस अदनान आप लेकर चलें, लोगों को साथ लेकर चलें, लोगों को बताएं, हकायक बताएं कि हमारा आने वाला जो वक्त है, वो तो वक्त वो अगले पता होता है और होता है, लेकिन अकल भी तो इंसान को, तालीम क्यों हासिल करता है बंदा, वो कहे जी खुद ही आ जाएगा, मैं खुद ही कॉलेज में चला जाऊंगा, मैं खुद ही डॉक्टर बन जाऊंगा, मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें तो अपनी जगह दुरुस्त है, किस्मत होती है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीज़ें खुद भी करनी पड़ती हैं, तब बंदा डॉक्टर बनता है, तब सियासतदान बनता है, जब वोटें पड़ती हैं, जीतता इलेक्शन जीतता तब बनता है।
0: बस मैं आपको भी बात बताऊं, इंसान को ना हर अपॉर्चुनिटी रखनी चाहिए, और जैसे मैंने अभी कहा कि मैं थोड़ी देर पहले आया तो मेरी बेटी कुछ करना चाह रही थी, तो मैं डाउट था, फिर मैंने उस चीज पर टाइम लिया, मैंने उससे बात की, मैंने कहा ये है, कहती है नहीं बाबा तो तुम देख लो तो बाहर से बदल गया हुआ, मैंने कहा हाँ ये बदल गया हुआ है। तो फिर मेरी तसल्ली हुई, इंसान को हर वक्त अपने आप को तैयारी करनी चाहिए कि इंसान किसी की मदद कर सके, और जो इंसान से हो सकता है वो इंसान को करना चाहिए। तो मैं
1: बहुत शुक्रिया अदनान आपका, आप भी टाइम की पाबंदी करते हैं, डेविन हमें मजबूरन भी करनी पड़ती है, लेकिन हमारी तबीयत में भी टाइम की जो पाबंदी है वो शामिल है। तो वक्त और लिहाज जो है हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हम जब खुद मिसाल बनेंगे, बच्चे भी देखेंगे वो भी पाबंदी करेंगे, दोस्त भी देखेंगे सुनेंगे वो भी पाबंदी करेंगे, लेकिन चूँकि बाज़ जगहों पर बड़ा रिवाज होता है कि 9 बजे अदनान से बात करनी है तो 10 बजे बात करके कहें जी अब बात कर, ये नहीं पता इसकी अदनान की 10 बजे क्या मसरूफियात होंगी, या अदनान सो गया नमाज पढ़ के या अपने काम पे लगा हो, ये हमारी एडिक नहीं होती कि मैंने 9 बजे का टाइम दिया तो मुझे 9 बजे ही बात करनी चाहिए।
0: साहब देखिए मैंने हमेशा एक चीज याद रखी कि जो टाइम होता है ना उस पे बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि उस टाइम पे बंदा करे। अब इंशाल्लाह जरा ये देखिए 9:30 होने वाले हैं, मुझे पता है कि 5-10 मिनट बाद मेरे बच्चे ने सोना है, मैंने उसको क्या कहते हैं तैयार करना है, क्योंकि उसको मैं टाइम से नहीं सुवाऊंगा तो वो टाइम से स्कूल नहीं पहुंचेगा, कौन स्ट्रेस पहुंचेगा तो वो पढ़ नहीं सकेगा। तो यही तो चीजें होती हैं कि मैं फिर टाइमिंग और ये चीजों को देखना पड़ता है और इंसान को करना पड़ता है,
1: यही तरक्की तो का राज है, यही हमें दीन भी सिखाता है, वक्त की कदर करें,
0: यही सब कुछ हमें सिखाता है। तो राजा साहब मैं इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बस ये कि आप अपने आप को देखें, बेहतर करें, अपने बच्चों की परवरिश करें, अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करें, और इससे आपकी क्या कहते हैं आपकी हिम्मत आती है।
1: अदनान आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, इंशाल्लाह रابطہ रहेगा। सामान नाजरीन ये थे अदनान अली अमीन, जो कि आपको ताज़ा तरीन मालूमात भी दे रहे थे, अपना तजिया भी पेश कर रहे थे गपशप की शक्ल में। सामान हम कोशिश करते हैं गपशप की शक्ल में प्रोग्राम करें, बड़े बड़े वजनी सवालात करना या बड़े बड़े वजनी जवाब लेना, फिर बहुत सारी बातें जो है वो समझने से भी वो कानों के ऊपर से भी गुजर जाती हैं। तो इंसान को सारी बातें करनी चाहिए लेकिन एक दोस्ताना माहौल में करनी चाहिए। सामने नाजरीन हमारे साथ साथ रही, अगले मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं।
3: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए। ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: इस वक्त हमारे साथ सियासी रहनुमा, साबका पार्लियामेंट के मेंबर और मौजूदा कोपनहेगन पार्लियामेंट के मेंबर, सियासी रहनुमा तजिया नगार मलिक सिकंदर सदीक जो है वो सियासी तजिया करते हैं, जो इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राजा साहब, आपके आपका और जितने भी आपके सुनने वाले हैं उन सबका शुक्रिया और प्यार भरा।
1: आपको आवाज आ रही है हमारी?
2: मुझे आपकी जनाब राजा साहब बिल्कुल।

0: एक यूनिटी है, ये दिन हमें इकट्ठा करती है, ये दिन एक यूनिटी पैदा करती है, और ये दिन एक एक स्पिरिचुअली जो है यूनिटी जो है जो हम सबके दरमियान है उसका भी एक सिंबल है। तो मैं समझता हूँ कि आप सबको 6 सितंबर जो है बड़ी खुशी से बड़े जोश से मनाना चाहिए, आप दुनिया में कहीं भी हो, क्योंकि ये बताती है कि जब कोई मुसीबत आए, जब कोई आफत आए, और ये मुल्क, ये कौम, ये लोग जब इकट्ठे हो जाएं, जब ये सारे इदारे इकट्ठे हो जाएं, जब फौज इकट्ठी हो जाए, तो फिर इस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता।
1: सिकंदर, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि इत्तेफाक में बड़ी बरकत है, आपने कहा इसका बड़ा खूबसूरत आपने ये मैसेज दिया। सिकंदर, आप सियासतदान हैं, अब बजट में आप शामिल हुए, बजट में बजट अब मंजूर हो गया, अभी भी बहुत सारी शिकें ऐसी हैं जो पब्लिक के सामने नहीं आ रही, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो पार्लियामेंट में क्या हुआ, जैसे कोपेनहेगन की पार्लियामेंट में, और ये बजट भी सुनने में आ रहा है पास हो चुका है, जरा हमारे नाजरीन के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें।
0: ये आपको मैं सुन रहा था, ये शायद वो हमारे रजीब कुरैशी साहब की फरमा रहे थे कि बजट पास हो गया, या वो लुबना साहिब शायद फरमा रही थी कि बजट जो है वो पास हो गया, मुझे अब याद नहीं है वो कौन कह रहा था, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। अभी बजट पास नहीं हुआ, बजट पास होगा जब असेंबली की सेशन होगा गालबन अक्टूबर में, एंड सितंबर में, तो वहां पे बजट जो है वो जो लॉर्ड मेयर है वो पेश करेगी, जो मेजोरिटी जो ग्रुप है वो पेश करेंगे, वहां पर इस पे बहस होगी, और वहां पे भी फिर एलसेनेसू बजट सामने रखा जाएगा, हर जो बजट के अंदर जो एक एक एलिमेंट है उसके ऊपर वहां पे वोटिंग की जाएगी, तो तब जाके बजट पास होगा। इस वक्त जो ये है कि बजट के हवाले से एक मेजोरिटी जो है सीटों की, उस मेजोरिटी ने एक अनाउंस कर दिया है कि हम अब एक एग्रीमेंट तक पहुंच गए हैं कि बजट के हिस्से में, बजट के अंदर ये चीजें होंगी, तो इसलिए बजट अभी पास नहीं हुआ, इस पे अभी भी मजीद जो है बातचीत चलेगी, इसमें कमी पेशी होगी, 19-20 का मतलब फर्क होगा, तो फिर ये जब मुकम्मल तौर पे पैकेज के तौर पे जब कोपेनहेगन असेंबली में जब आएगी, तो वहां पे जो है इसको फिर वोटिंग करके इसको पास कराया जाएगा। और आप ये देखें कि कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो बजट के इस जो इन एग्रीमेंट था इसे निकल गए, इसी तरह आप मैंने बताया पिछले हफ्ते हम भी इसे निकल गए, और उसकी डिफरेंट वजूहात है। सबसे पहले अगर आप ओवरऑल इसमें देखें तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये बजट जो है, ये जो लॉर्ड मेयर नहीं बनी है, इसने कोशिश ये की है कि जितनी भी पार्टीज हैं ज्यादा से ज्यादा जो राइट विंग की भी हैं उन्हें भी साथ लिया जाए। अब इशू ये होता है कि जब आप राइट विंग पार्टीज को भी साथ लेंगे तो फिर वो भी कहेंगे कि ठीक है, अगर आपने हमें बजट में लेना है तो फिर हमें भी कुछ चीजें चाहिए। अब आपको मिसाल देता हूँ, अब डेनिश पीपल पार्टी जो है उन्होंने दो बहुत सारी चीजें मांगी हैं, तो दो चीजें उनको और चीजों में जो दो चीजें मिली हैं उसमें एक चीज ये है कि जितनी भी तंजीमें हैं कोपेनहेगन में, स्पेशली जो आपको पता है कि बहुत बड़ा इशू रहा है स्विमिंग का, औरतों की स्विमिंग का, कि वो अलहदा करना चाहते हैं, उस पर उन्होंने पहले तो इसको रुकवाया और इस पर बड़ी बहस की। अब उनको बजट में ये चीज भी मिली है कि कम्यून जो है वो बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से अब कंट्रोल करेगी इन तंजीमों को, ये कौन सी तंजीम है, क्या है, ये कोई गलत तो नहीं कर रही, ये कोई स्विमिंग ऑफ तेल तो नहीं है, तो इसका मतलब यही हुआ ना बेसिकली कि जो माइनॉरिटीज के हवाले से जो तंजीमें हैं जिनको इनको पता होता है कि टारगेट तो ये मुसलमानों को ही कर रहे हैं, उसके लिए इनको क्या कहते हैं बजट में हिस्सा मिला है कि अब इसको बड़े पुख्ती से और सख्ती से जो है कोपेनहेगन कम्युनिटी देखेगी। हम ऐसे बजट का तो हिस्सा नहीं बन सकते। इसी तरह बजट के काफी हिस्से में जो हमारी यहाँ पे यहूदी जो कम्युनिटी है, जूश कम्युनिटी है, उसके हवाले से बहुत सारी चीजें इस बजट में है जो कि उनका हक है, उनको मिलना चाहिए, लेकिन उनके अलावा भी तो और माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं जिस तरह के मुसलमान हैं, उनको भी मिलना चाहिए, उनका क्या कहते हैं जिक्र ही नहीं है, सिर्फ एक हेल्ली प्लेन वो गसीस में जो है जो एक पहली की चीज चल रही थी वो चल रही, कोई नई चीज उसमें नहीं आई, कोई ऐसी चीज उसमें नहीं आई को गसीस्मे के हवाले से, डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से। और इसी तरह जो हमारा मेजर इशू था पहले, जो हम कहते थे कि ये बजट जो है

0: वो कहते हैं कि जब हमला हुआ तो अनायतुल्लाह साहब कहते हैं कि मेरी उनसे सरेराह मुलाकात होगी, तो मैंने इनसे सिर्फ इतनी सी बात पूछी कि वो कौन सा जज्बा था जिससे आपने अपने से 10 गुना ताकतवर नेवी को बंदरगाहों में दुबके रहने पर मजबूर कर दिया। अनवर साहब ने जरा सोच कर कहा, मैं समंदर में था तो मुझे इतला मिली कि कराची डाक यार्ड पर बमबारी हुई है। इस वक्त मेरे बच्चे डाक यार्ड के क्वार्टर में थे। मुझे अपने बच्चों का ख्याल आया, लेकिन मुझे फौरन याद आ गया कि मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि 10 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए लड़ रहा हूँ। ये ख्याल आते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे 10 करोड़ बच्चे और बच्चियां हैं और अल्लाह की जात के बाद इनका महाफज मैं हूँ और मेरे बहरी गाजी। इस एहसास ने ऐसी कुव्वत अता की कि मैं दुश्मन की ताकत को भूल गया। इसके अलावा कमोडोर अनवर ने कहा, मुझे कायद आजम का एक फरमान याद था। उन्होंने 23 जनवरी 1948 को पाक बहरिया को खिताब करते हुए फरमाया था, आपको अपनी बहरी कुव्वत की कमी को हौसले और इसास से पूरा करना होगा। महज जीना कोई माने नहीं रखता, जिंदगी वो है जो हम हिम्मत और इस्तकलाल अज़्म और इसार से भरपूर हो। कमोडोर अनवर ने कहा, मैं खुले समुंदरों में अपने महबूब कायद आजम की रूह के सामने जवाब देता, मुझे अपनी कुव्वत की कमी को जज्बा इसार से पूरा करना था। चनाचे मैंने कम से कम वक्त कुव्वत से ज्यादा काम लिया। मैं अल्लाह ताला का 100 बार शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे फहम और फरासत अदा की और मुझे पाकिस्तान के दिफा के काबिल बनाया। मैं हर लम्हा खुदा से एक ही इल्तजा करता था कि या रब्बुल इज्जत, मैं कोई ऐसा गलत फैसला ना कर बैठूं जिसके नतीजे में मेरे बहरी गाजियों की जानें जाया हो जाएं। अल्लाह का एहसान है कि मेरा मिशन कामयाब रहा और मेरा कोई गाजी जख्मी नहीं हुआ। राजा साहब, बातें करने को बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमें अपने वक्त को भी मद्देनजर रखना है। इस जंग में हमसे कुछ गलतियां कोताहियां भी हुई और जरूरी है कि उन गलतियों और कोताहियों को दुरुस्त किया जाए। बहरहाल इस जंग के मुतल्लिक बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन का क्या कहना था, इस सिलसिले में गार्डियन अखबार के नुमाइंदे ने जंग के बाद 4 अक्टूबर 1965 की इशात में लिखा था, पाकिस्तानी बहादुर लोग हैं, बेखौफ पाकिस्तानियों और बददिल हिंदुस्तानियों को देखकर प्रोपेगंडे का असर खत्म हो जाता है। इसी तरह बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता अमरीकी हफ्त रोजा टाइम के नुमाइंदे लोइस करार ने 23 सितंबर 1965 के शुमारे में जंग सितंबर के महादों को अपनी आंखों से देखा और लिखा था, मैं पाक भारत जंग को शायद भूल जाऊंगा, लेकिन पाक फौज का जो अफसर मुझे महाज पर ले गया था उसकी मुस्कुराहट को कभी नहीं भूल सकूंगा। ये मुस्कुराहट मुझे बता रही थी कि पाकिस्तानी नौजवान किस कदर नडर और दलेर हैं। जवान से जर्नैल तक को मैंने इस तरह आग के साथ खेलते देखा है जिस तरह गलियों में बच्चे कांच की गोलियों से खेलते हैं। वो कहता है, जो कौम मौत के साथ आंग मचोली खेलना जानती है उसे कौन शिकस्त दे सकता है। और ताजा साहब, यही हकीकत है कि जब तक एक मुसलमान मौत से खौफजदा नहीं होता तो दुनिया की कोई कुव्वत उसको शिकस्त नहीं दे सकती। हो सकता है वो मादी वसाइल में कमी का शिकार हो, लेकिन इस मादी वसाइल की कमी को उसका जज्बा पूरा करता है। और इस वक्त भी हम हो सकता है बहुत से मसाइल में गिरे हों, लेकिन अगर हम अपने अंदर बहसियत कौम वही जज्बा पैदा करें जिस जज्बे का मुजाहरा उस वक्त हमारी फौज के जवानों, शहीदों और गाजियों ने किया था, तो हम हर मुश्किल में काबू पा सकते हैं और दुनिया में एक बावकार कौम के तौर पर जाने और पहचाने जा सकते हैं। जी राजा साहब।
1: शौकत साहब, बहुत खूबसूरत अल्फाज आपने पहनाए 6 सितंबर के हवाले से। कल हमने मुख्तसर सा प्रोग्राम किया मिली नगमे, हमने अपनी तरफ से ताई कोशिश की, जो आपने वाकयात बयान किए सीने वाले कैसे कैसे लोगों, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं खुद इस फौजी गिराने से, मुझे बहुत सारी चीज़ें मसाले मेरे पास भी हैं, लेकिन अब वो वक्त दोबारा 6 सितंबर तो नहीं आ सकता, लेकिन हम आते हैं पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान में 6 सितंबर को क्या हुआ। टीवी स्टेशन मुख्तलिफ चैनल्स पर दिखाया गया और प्रोग्राम भी बनाए गए और उसके बाद हम लीडरान की तरफ चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان عبدالقیوم بھٹی آپ کے پسندیدہ پروگرام گرین کارڈ اسپیشل کے ساتھ حاضر ہے. سلام قبول کیجیے. اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے یا ہم تک اپنی آرا پہنچانے کے لیے آپ ہمیں 3929-7104 پر کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک کے پیج گرین کارڈ اسپیشل پر بھی کامنٹ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر لائیو سن رہے ہیں. آج کے پروگرام اسپیشل پروگرام لے کر آئے ہیں ہم آپ کے لیے. لیکن آپ آج کے پروگرام میں جانے سے پہلے شروع کرنے سے پہلے ہمارے کو ہوسٹ علی بھی موجود ہیں. علی
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بھٹی صاحب, آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ آج کا ہمارا پروگرام کچھ خاص ہوگا اور اس کی مناسبت کچھ ہمارے یوم دفاع اور یوم فضائیہ کے حوالے سے ہوگی. اس کی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. اور سامعین, جس طرح بھٹی صاحب نے آپ سے کہا کہ آپ بھی اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں, آپ ضرور کال کیجئے. آپ اپنے تاثرات, اپنے اظہار خیالات آپ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. خاص طور پہ جو ہمارے لیے ایک بہت یادگار دن ہے, جب ہماری سرحدوں کی حفاظت ہمارے ملک کے شاہینوں نے کی. 6 ستمبر 1965 کی بات ہے, 7 ستمبر 1965 کی بات ہے. تو آج ہم اس پروگرام میں اپنے ان شہداء کو بھی یاد رکھیں گے, ان غازیوں کو بھی یاد رکھیں گے جنہوں نے ہماری سرحدوں کی حفاظت کی اور ہمارے ملک کو ایک دفعہ پھر ناقابل تسخیر بنا دیا. جی بھٹی صاحب.
0: جی علی, بالکل جیسا کہ آپ نے انٹروڈکشن کرایا پروگرام کا, 6 ستمبر کے حوالے سے اور 7 ستمبر کے حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام ہے. ان آج کا پروگرام ہمارے ان غازیوں اور شہیدوں کے نام ہے جنہوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اس قوم کی, پاکستانی قوم کی حفاظت کی, جنہوں نے فوراً باہر کے تسلط سے ہمیں آزادی دلائی, جنہوں نے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے آج ہم اگر آزاد ہیں تو انہی کی وجہ سے آج کا پروگرام ان کے نام ہے.
1: جی بالکل, آپ نے صحیح کہا بھٹی صاحب. آج کا پروگرام ہم اپنے شہیدوں اور غازیوں کے نام کرتے ہیں. 6 ستمبر کی صبح جب ہمارے دشمن نے, اس وقت کے دشمن نے ہمارے ملک پاکستان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی, تو ہمارے غازیوں نے, ہمارے شہیدوں نے, ملک کے ثبوتوں نے, ماں کے نوجوانوں نے, بیٹوں نے ہماری سرحدوں کی حفاظت کی اور ان کے اس ناپاک عزائم کو جو ہے وہ خاک میں ملا دیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. اور آج ہم بالکل, جو اگر 1947 کے بعد ہم دوبارہ سے آزاد تھے تو بالکل اسی انہی شہینوں کی بدولت آزاد تھے. 6 ستمبر کا دن ہماری ہسٹری میں جو ہے وہ سنہرے حروفوں سے لکھا جاتا ہے اور سنہرے حروفوں میں ہی یاد کیا جاتا ہے. اور اس کی وساطت ہے, جس طرح ابھی ہم نے اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک نغمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا, وہ بالکل میڈم نور جہان کا نغمہ تھا جو انہوں نے اس وقت ریکارڈ کروایا. اور جب ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے فوجیوں کو ایک جذبے کی ضرورت تھی اس وقت, خواہ وہ لوگ جو میدان جنگ میں خود نہیں جا سکتے تھے, انہوں نے مختلف طریقوں سے ہمارے فوجی ساتھی, فوجی بھائیوں کا, ہمارے شہیدوں کا جذبہ بڑھایا. کچھ لوگوں نے نغمے, اس طرح کے ملی نغمے گائے, کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ان کے لیے وہاں پہ کھانے کا انتظام کیا, ناشتوں کا انتظام کیا, ان کے لیے اچھی سے اچھی سہولتیں دیں. اور جو لوگ زخمی تھے, جو غازی تھے, ان لوگوں کے لیے مرہم پٹیوں کا انتظام کیا. تو ہماری فوج کے ساتھ ہماری قوم شانہ بشانہ کھڑی تھی اور ہمارے فوجیوں نے, ہماری قوم نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا.
0: جی علی, میں آج ایک کامنٹ پڑھ رہا تھا کسی کتاب میں کہ جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا 6 ستمبر کو, جب پاکستانی افواج اپنے دفاع کر رہی تھی تو انڈیا نے اپنے ریڈیو پہ اناؤنس کیا کہ ہم لاہور سے 2 سے 3 کلومیٹر دور رہ گئے ہیں. ان کی فوجوں نے جھوٹ بولا اور اپنے فوجیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ اناؤنس کیا کہ ہم لاہور سے 2 سے 3 کلومیٹر رہ گئے ہیں, حالانکہ وہ بہت زیادہ دور تھے. تو ایک فوجی جو تھا وہ جو سڑک کے کنارے وہ مورچہ زن تھا, اس کے ساتھ ایک وہ مائل سٹون بھی تھا جس کے اوپر 42.6 لکھا ہوا تھا کہ لاہور وہاں سے کچھ اتنے کلومیٹر ہے. تو اس نے وہ سٹون جو تھا, مائل سٹون جو تھا, اس کو اٹھا کے آگے جا کے سڑک کے درمیان جا کے رکھ دیا اور اس کے اوپر لکھا بلڈی 42.6 माइल्स, मतलब कि आपको खून की नदियां यहां पे बह जाएंगी, फिर आपको आगे जाना पड़ेगा, हमारे खून के हमारी लाशों के ऊपर गुजर के आप जाएंगे, वैसे आप नहीं जा सकते। तो ये हमारे फौजियों और जवानों का ये हौसला था। और आज अगर हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं तो उन फौजियों और शहीदों के खून की बदौलत है, और जो शहीद की जो मौत होती है वो कौम की हयात होती है। तो इस तरह जिस तरह अली आप कह रहे थे कि मुख्तलिफ ज़िंदगी के हर शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग थे सब ने बढ़ चढ़ कर उस वक्त में यकजहती का मुजाहरा किया, पूरी पाकिस्तानी कौम सिसा पलाई हुई दीवार बन गई, और ज़िंदगी के हर शोबे से जिस तरह के आप बता रहे थे जो गुलूकार थे, अगर गुलूकारों को ले लें तो उनके अंदर आपको पता है मैडम नूरजहां है, और उसके साथ जो मेहदी हसन है, फिर और भी दूसरे, ये तो इनके तो हमने बहुत नगमे सुनते रहते हैं, और भी बहुत सारे गुलकार थे जिन्होंने अपने उस वक्त नगमे गाए, और यही नगमे जो थे उस वक्त हमारी कौम का हौसला बढ़ाते थे, हमारे फौजियों का हौसला बढ़ाते थे। और उसके बाद बड़ी मशहूर बात है कि लाहौर का हलवा पूरी बहुत मशहूर है, उस वक्त लाहौर के शहरियों ने हलवे पूरी से अपने ये जो फौजी थे जवान थे उनके ऊपर उनके मोर्चों के अंदर जाके हलवा पूरी से उनकी तवाज़ो करते थे, उन तक खाने पहुंचाते थे, हलवा पूरी से उनकी तवाज़ो की जाती थी अपने मतलब फौजियों की जो उनकी खातर उनकी हिफाजत कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल भट्टी साहब आपने सही कहा, और क्योंकि 1965 कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मुझे यकीन है कि बहुत सारे हमारे जो हैं वो बुज़ुर्ग अभी भी हयात हैं जिन्होंने वो फौज और उस जज्बे को उस जंग को अपनी आंखों से देखा, बहुत सारे लोगों ने खुद से पार्टिसिपेट किया होगा, और हम बिल्कुल हमारी ख्वाहिश होगी कि वो ऐसे लोग जिन्होंने उस वक्त फौज का साथ दिया या ऐसे लोग जिन्होंने वो जंग उस जंग को अपनी आंखों से देखा अगर वो कॉल करके अपने उन जज्बात का दोबारा से इजहार करेंगे हमारी कौम के सामने, खासतौर पर जो यहाँ पे नई नस्ल परवान चढ़ रही है। मेरा कल भी मैं एक जगह पर बैठा हुआ था किसी बच्चे की खत्म कुरान आमीन थी, तो वहां पे भी मैं ये डिस्कस कर रहा था कि हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ पे हमें अपने जो नई नस्ल है जो बच्चे हैं या थोड़े बड़े बच्चे हैं उन बच्चों को बताना चाहिए कि ये दिन या कोई भी दिन खास दिन उस दिन की अहमियत बतानी चाहिए कि इस दिन को क्या हुआ था। अगर ईद है तो ईद की उन्हें अहमियत और फजीलत बतानी चाहिए, अगर जिस तरह 6 सितंबर है 7 सितंबर है जश्न आज़ादी 14 अगस्त है 23 मार्च है कोई भी ऐसा दिन है आप अपने घरों में ऐसा माहौल बनाएंगे तो बच्चों को पता चलेगा उनके अंदर एक जस्तजू पैदा होगी वो खुद से पूछेंगे कि ये दिन क्या है क्यों मनाया जाता है। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे हम 3-4-5 दिन पहले अगर 14 अगस्त आनी होती थी हम बाजारों में निकल आते थे झंडियां लेके आते थे हजारों झंडियां जो है वो हम लगाते थे उनको धागे के ऊपर लगाना, और ये भी हमें अच्छी तरह याद है जिस दिन 14 अगस्त होती थी उस दिन बारिश हो जाती थी मगर हमें उसका दुख नहीं होता था कि हमने सारी रात मेहनत करके हमने झंडियां लगाई और अगले दिन बारिश हुई वो झंडियां सारी जो है वो पानी की नजर होगी, मगर हमारे अंदर एक जज्बा था जस्तजू होती थी। इसी तरह जब 6 सितंबर का दिन आता था तो हम 6 सितंबर को टीवी के ऊपर इतने नगमे लगते थे कि अब हम वो नगमे जो है हम वो नगमे बेसिकली सुन सुन के बड़े हुए। 7 सितंबर आती थी तो हम एयरपोर्ट के ऊपर या जहाँ पे ये फौजी हजरात जो है वो अपने ये फौजी साजो सामान की एग्जीबिशन लगाते थे हमारे वालदैन हमें वहां पे लेकर जाते थे ताकि हमें पता चले कि क्या, फिर जस्तजू पैदा होती थी कि अब जब वहां पे हैं तो आपको पता चले कि आप कैसे क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई थी कैसे जंग लड़ी जाती है कि आपको हर दिन की फजीलत का पता होना चाहिए। और जब तक ये हमें पता नहीं होगा हमारे बच्चों को या जब तक हम अपने घरों में ये माहौल नहीं बनाएंगे हमारे बच्चों को ये चीज़ें पता नहीं चलेंगी, और अगर बच्चों को ये चीज़ें पता चलेंगी तो फिर उनमें जो है वो मोहब्बत वो वतन की मोहब्बत पैदा होगी वतन के लिए जज्बा पैदा होगा। यहाँ पे हम देखें अगर आप सारा दिन टीवी के ऊपर बैठ के आप सियासत की बातें चलती रहेंगी या ड्रामों की बातें चलती रहेंगी तो हमारी जो बुनियादें हैं वो बच्चों को बुनियादों का नहीं पता चलेगा। बच्चों हमारी बुनियादें जो हैं वो 1947 से पहले अगर आप देखें या 1947 के बाद देखें दो मुख्तलिफ तारीखें हैं कि 1947 से पहले पाकिस्तान बनाने के लिए माओ ने अपने बच्चों को शहीद किया माओ ने खुद कुर्बानी दी लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिए। 1947 के बाद जो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो उन सरहदों की हिफाजत जो है वो हमारी फौज ने की। 1948 की जंग लगी, उसके बाद 1965 की, 1971 की, हमें बांग्लादेश को अपने लखते जिगर को हमें अलहदा करना पड़ा, फिर उसके बाद कारगिल की जंग हुई। तो ये हमारे लिए वो बहुत लगा लो कि पाकिस्तान के सीने में बहुत ज्यादा जख्म है, पाकिस्तान को अपना एक हिस्सा जो है वो टुकड़ा अलहदा करना पड़ा। मगर ये जब तक ये हिस्ट्री तारीखें जब तक हमारे बच्चों को नहीं पता चलेंगी, उनमें वतन की मोहब्बत का जज्बा पैदा नहीं होगा, और ये जज्बा हमने पैदा करना है। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं, जो फॉरनर्स हैं, यहाँ स्कूलों कॉलेजों में उन्हें डेनमार्क के हवाले से तारीखों का बताया जाता है, कौन सा दिन खास दिन है, क्या दिन होता है, और बच्चे फिर उस तरह से प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, बच्चों को पता होता है क्या दिन है। अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप यहाँ पे नहीं करते, मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चों को अभी ये चीजें नहीं पता। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन वालदैन से जो ये सुन रहे हैं प्रोग्राम, जो हमारी बातें सुन रहे हैं, कोशिश करें कि अपने घर में ऐसा माहौल बनाएं ताकि बच्चों को पता चले कि ये दिन क्या है, दिन कैसे दिन, ये इस दिन की अहमियत क्या है, इस दिन को हुआ क्या था, उनको थोड़ी सी जस्तजू उनके दिलों में पैदा हो ताकि वो इस इन दिनों को उसी तरह एहतमाम के साथ मनाएं जिस तरह हम मनाते थे। जी भट्टी साहब।
0: जी अली, बिल्कुल ये एहतमाम करना चाहिए, और वालदैन की तरबियत बच्चों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा होती है, और जब तक वालदैन अपने बच्चों को ये नहीं बताएंगे तो यकीनन बच्चों को नहीं पाकिस्तान की तारीख का पता चलेगा, पाकिस्तान की मुश्किलात का पता चलेगा। और जब वालदैन को नहीं, वालदैन को अपना इलम भी बढ़ाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मीडिया सुनना चाहिए, ताकि उनको ये भी पता चले कि और नई नई चीज़ों का पता चले, जो नई किताबें लिखी जाती हैं या जिन लोगों ने अपनी याददाश्तें लिखी हैं वो भी किताबें पढ़नी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि उस वक्त के जो उस जंग के अंदर इन्वॉल्व लोग थे उन्होंने कैसे किया, कि क्या किया, और कैसे कैसे अपने मतलब के लोगों का, अपनी फौज का, अपने वतन का, अपने अपने दायरा कार में रह के उसका कैसे दिफा किया। और जी अली, आप कुछ कहना चाहते?
1: जी बिल्कुल भट्टी साहब, आपने सही कहा, ये तारीख भरी पड़ी है, तारीख के औराक भरे पड़े हैं इन चीज़ों से कि एक एक देखें, एक एक फौजी की अगर उसके ऊपर हम किताब लिखना शुरू कर दें तो आपको पता चलेगा कि किस कदर कुर्बानियां दी हैं, किस कदर हम लोगों ने, हमारे फौजियों

0: जाते हैं अम्बेसी में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, जिस तरह मसलन आप फर्ज करें अम्बेसी में कोई और निजी तकरीबात होती है, कभी मुशायरा हो गया, कभी इस तरह की चीजें होगी, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी अम्बेसी को भी, कि ऐसे दिनों को भी, ऐसी तारीखों को भी मनाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले, उनमें एक जज्बा पैदा हो, ना कि सिर्फ अगर आप अम्बेसी में जाएं तो आपको इस तरह के मवाद लिखे हुए पड़े हुए मिल जाए, मगर प्रैक्टिकली भी पता होना चाहिए, छोटी मोटी एग्जीबिशन लगनी चाहिए ताकि हमारी कौम को, हमारे बच्चों को पता चले। जी हमारे साथ लाइन पे है। जी सलाम अलैकुम।
1: जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अली भाई ज़हीर अर्ज कर रहा हूँ।
0: जी सलाम अलैकुम ज़हीर साहब,
1: आपको और रेडियो आपकी आवाज के तमाम सामईन को और जो हजरात आप बैठे हैं, भट्टी साहब बैठे हैं, राय साहब बैठे हैं, और खास तौर पे एक नौजवान आपसे पहले जो उन्होंने प्रोग्राम दिया है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा। बात देखें ये है कि आप नौजवानों पर फख्र है, आज से 1965 की आप बात कर रहे हैं उन पर भी फख्र था और आप पर भी फख्र है। आज ऐसे मालूम हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक क्या कहते हैं जवेद हाशमी नहीं हमारे पास, माशाल्लाह कई जवेद हाशमी हैं, कई राशिद मनास हैं, कई मेजर तफैल हैं, कई अजीज भट्टी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अली भाई आप 6 सितंबर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत अच्छा लगा, कोई कसर तो नहीं छोड़ी शौकत भाई ने, लेकिन यह है कि चूंकि समय जानते हैं मैं गग्गू मंडी का रहने वाला हूं, हमारे गग्गू मंडी में पाकिस्तान की तारीख में मेजर फैल साहब शहीद हुए थे 1965 में। तो इसी तरह जैसे सारे शहदा को खुराज तहसीन पेश किया गया, उनके लिए दुआएं की गई, तो इसी तरह गग्गू मंडी में भी ब्रिगेडियर साहब आए, काफी फौजी साहबान, और उन्होंने दुआएं पढ़ी, चादर चढ़ाई, यानी कि अपने उन नौजवानों को, उन शहदा को याद किया। तो ये सरमाया है अली साहब भट्टी साहब हमारा सिर्फ उनकी यादें हमारे लिए सरमाया है, और आज हम फख्र करते हैं उन शहदा ने जाने दी हैं, उस नुसरत जहां डॉक्टर ने कुर्बानियां दी हैं, उस मेजर साहब ने कुर्बानियां दी हैं, राशिद मनास ने कुर्बानियां दी हैं, तो आज हम भी हैं, पाकिस्तान भी है, तो और हम इस पर, इस धरती पर फख्र भी करते हैं। लेकिन अफसोस, यहाँ एक मैं अफसोस करूंगा, अफसोस ये है कि जुमे वाले दिन से, जुमे रात वाले दिन से अस्तग़फ़िरुल्लाह इनकलाब तो ना आया, आज धरनों की उम्र 31 दिन हो चुकी है, धरनों की उम्र 31 दिन हो चुकी है मेरे हिसाब से, इनकलाब तो ना आया लेकिन एक तूफानी सलाब ने हमें आन लिया। तो इसी धरनों में वही म्यूजिक चलता रहा, वही डांस होता रहा, और उस वो जो मरे बेचारे 200 से ज्यादा अब उनकी तादाद हो गई है सलाब में, उनके लिए दो लफ्ज ना किसी से निकल सके, इस पर एक बहुत बड़े सवालिया निशान है। लेकिन बार बार बार बार वही दुआ है, वही इल्तजा है, वही आप जवानों की बातें सुन के जो ना ये उम्मीद की किरण भी फूटती है और दिल खुश भी होता है कि अगर देखें इंशाल्लाह ताला ये मुल्क कायम रहेगा हम नौजवानों की वजह। जी
2: जाहिर साहब, अब्दुल कयूम भट्टी बात कर रहा हूं सर, सलाम कबूल कीजिए। सर आप 1965 के अंदर आपकी उम्र क्या थी और आप किधर थे और क्या था जज्बा उस वक्त जिधर आप थे, और लोगों के अंदर क्या जज्बा था, और फौजियों के बारे में क्या आपके मतलब के आम लोगों के जज्बात क्या थे, किस तरह से आप फौजियों को मिलते थे, जिस तरह के मुझे याद है जब फौजी मतलब के जब हम छोटे थे फौजी हमारे पास से गुजरते थे तो हम उनको सलाम करते, छोटे छोटे बच्चे होते थे हमें नहीं पता होता था लेकिन हम उनको सलाम करते थे, आज भी बच्चे मतलब फौजियों को सलाम करते हैं, उस वक्त आपका क्या जज्बा होता था, मतलब 1965 की अगर कोई यादें वगैरह वाबस्ता हैं आपके पास, याद है आपको तो प्लीज शेयर कीजिए हमारे साथ।
1: जी माशाल्लाह भट्टी साहब, मेरी तो 1965 की मार्च की पैदाइश है, तो मैंने ये सारे वाकयात बाद में देखे हैं, पढ़े हैं, लेकिन 1971 में मैं एक आपसे शेयर करता हूँ। हमारे चाचा जी हैं, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह वो हयात हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी उम्र दराज करे, मियां हनीफ साहब, वो 1900

0: 73 की जंग में कैदी थे, तो उनसे जो ना जब भी हम पाकिस्तान जाते हैं उनसे मुलाकात होती है, तो उनसे हम सबसे पहले सबसे ज्यादा बातें उनसे जो ना मैं तो उस वक्त की करता हूँ, जंग की करता हूँ। तो साहब कैदियों के बारे में बता रहे थे कि वो चाचा जी हमारे अनिल साहब हमें ये बताते हैं, वो कहते हैं कि बेटा असल में जब जंग हो रही होती है दुश्मन के सामने तो जज्बा ही इतना होता है, जज्बा इतना होता है। हम कैदी होने के बावजूद सिर्फ मैं नहीं, हर जितने भी हम कैदी लोग थे, हमें थोड़ा सा भी दुश्मन का डर नहीं था, हमारी आंखों में थोड़ा सा भी डर नहीं था। हालांकि हिंदू इतना जालिम है, इतना जालिम है, वो हम पे जुल्म बहुत करते थे, यहाँ तक के अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुर, यहाँ तक के ये वो बात है जो मेरे चाचा जी ने मेरे कानों में डाली है कि हमें खाना खाने में भी मिलावट करके दिया जा रहा था। लेकिन देखें तारीख में भट्टी साहब, तारीख में जो बातें हैं वो सुनहरे रूप में लिखी जाएंगी, जिस तरह 1973 के कानून जो भुट्टो साहब ने दिया, इसी तरह इन जंगी कैदियों को भी भुट्टो साहब ने छुड़ाया था, ये भी उनको भी एक जो ना सलाम जाता है, उनकी भी ये तारीफ की बात है। तो ये बातें थी, इस तरह है कि हम देखें, हम जिस भी आज भी उस वक्त भी आज भी तारीख बड़ी पड़ी है भट्टी साहब के, अल्हम्दुलिल्लाह फौजी भाई को सलाम है, फौज को सलाम है। देखिए आप ये लेटेस्ट ही बात कर लें कि अब सैलाब आया हुआ है तो सारे अंदर बड़े हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं, और फौज हमारी बेचारी जो है ना वो सारी जो ना मदद कर रही है, उनको रेस्क्यू कर रही है, उनको मदद दे रही है। तो ये फौज को सलाम है, फौज की उस वक्त भी कदर थी, बाद में भी रही, कुर्बानियां भी फौज की हैं, और फौज को बदनाम भी करते हैं। देखें ये सारे सिनेरियो जो है सारा कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, बात सिर्फ ये है कि हम अपने वतन के लिए, आप लोग जो काम करते हो, मैं बार बार वही बात कहता हूँ, ये सिर्फ मैं पिछले प्रोग्राम पर भी राय साहब से बात कर रहा था, तो मैंने शौकत साहब को 2-3 दफा उसकी तरीफ, हालांकि वो मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरे दोस्त भी नहीं है, सिर्फ मैं उनको जानता हूँ, हालांकि वो पीटीआई से उनका तलक है, मेरा पीटीआई से तलक नहीं है, लेकिन किसी दोस्तों ने मुझे ना मजाक करना शुरू कर दिया कि आप यार उसको बड़ा खाते हो। नहीं, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं ये कहता हूँ कि जो सच्चा इंसान है वो कहाँ से भी हो, जो सच बोलता है, सच का साथ दो, सच के साथ हो जाओ, सच की मदद करो। तो ये बातें हैं मेरे भाई।
1: आपने जहीर साहब बिल्कुल सही कहा, और इस सिलसिले में हमारी फौज की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा, हमेशा याद रखा जाता है। जिस तरह अभी हमने पहले भी बात की, अभी आपने भी इस बात का जिक्र किया कि जब भी खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क के ऊपर कोई आफत आती है तो सबसे पहले जो स्टेप इन होते हैं वो फौजी होते हैं, हमारे फौजी भाई होते हैं, और उन्होंने हमेशा से पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की है, ख्वाब वो बैरूनी सरहदें हों, अंदरूनी सरहदें हों, उन्होंने हमेशा खतरात का सामना किया है, चाहे वो अंदरूनी खतरात हों, बैरूनी खतरात हों, हमेशा से ही फौज ने जो है वो हमारी सरहदों की हिफाजत की है, हमारे मुल्क की हिफाजत की है। और इसके साथ साथ जिस तरह मैं अभी शुरू में भी बात की कि ये जज्बा जो है अब हमारे जो नई नस्ल है, जो नए बच्चे हैं, उन तक ये मुंतकिल करने की ज़रूरत है, उन बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि हमारे मुल्क की तारीख क्या है। ये दिन जो हमारे मुल्क में बड़े बड़े दिन आते हैं, जिन दिनों में पूरे टीवी पे, पूरे हर जगह पे इसी दिन की मुनासबत से प्रोग्राम चलते हैं और चला करते थे, और ये बच्चों को मुंतकिल करने की ज़रूरत है। जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, हम यूरोप में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर, खा वो यूरोप है या दूसरे ममालिक हैं, पाकिस्तान की एम्बेसीज को इस तरह की डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें लेके चलनी चाहिए, ताकि बच्चों को इन तारीखों का पता चले। और मैं आपके विसात से और जितने भी हमारे यहाँ पे बुजुर्ग हैं या जो ऐसे एक्टिव लोग हैं, उन लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि अगर कभी भी आपका एम्बेसी में इस तरह की कोई मीटिंग हो, या किस तरह की जब हमें कभी मौका मिले, तो हमारी ये नेक तमन्नाएं, हमारी नेक ख्वाहिशात, या हमारी ये रिक्वेस्ट एम्बेसडर साहब को ज़रूर पहुँचाएँ, या कि आप 14 अगस्त के साथ, 23 मार्च के साथ ऐसे दिनों का भी एहतमाम करें अपनी एम्बेसी में, ताकि लोगों को पता चले, लोगों को हमारी हिस्ट्री पता चले। जब तक लोगों को हिस्ट्री नहीं पता चलेगी, लोगों में जस्तजू पैदा नहीं होगी इस दिन को मनाने की, इन तारीखों को पढ़ने की, और जो हमारी इतनी तारीख में औराक है, उन औराक को पलटने की भी जो है वो जस्तजू उसी वक्त ही पैदा होगी जब लोगों को पता चलेगा कि है क्या, चीज़ें हुई कब थी, कहाँ से हुई। तो आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। तो हम, अगर आप इसके साथ कुछ कहना चाहते हैं तो, वरना फिर हम अपने अगले कॉलर के पास चलते हैं।
0: बस मैं जनाब इंशाल्लाह ताला अली जुवेद भाई 1935 کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ نوجوان جو حاضر جو حاضر دور کے نوجوان ہیں سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور اپنے آپ جذبوں کو قائم رکھیں انشاءاللہ تعالی سچ کا
1: جی بالکل کیونکہ ہمارا یہ اس طرح کا پروگرام تو نہیں ہوتا مگر اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آج بہت بڑا دن ہے کل بہت بڑا دن تھا تو ہم اپنے فوجی بھائیوں کو وہ شہداء وہ غازی وہ پرانے لوگ جن کا اس جنگ سے یا اس دن سے کسی نہ کسی طرح سے تعلق رہا ہے ان کی نظر ہم ایک ملی نغمہ پیش کرتے ہیں جو اس وقت کا نغمہ تھا جب لوگوں کو ان میں جذبہ پیدا کیا گیا تھا تو ہم آپ کی نظر ایک نغمہ جو ہے پیش کرتے ہیں
0: بہت شکریہ
1: بہت شکریہ آپ کی کال کا

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।